नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते ये आकाशवाणी जलंधर केंद्र दा एफएम रेनबो चैनल है। आज जे शकसवंत 1947 दे ज्येष्ठ महीने दी 13 तरीक, तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे जून महीने दी 3 तरीक है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे ने ते साडी अज दी सभा हुण शुरू हुंदी है। एफएम रेनबो अपने सारे स्रोतियां दा निग्गा स्वागत करदा है।

0: तरह एक जिन लोगों को ज्यादातर लाइफ यूरिक एसिड की समस्या रहती है उनको यूरिक एसिड के स्टोन बनते हैं
1: जी।
0: ये तो तीन तरह के बन जाते हैं हमारे किडनी में स्टोन। इसी तरह बात अगर हम करें कि पित्त की थैली में मतलब पित्त की पथरी की, तो वो भी तीन से चार तरह के होते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें कैल्शियम का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल का, और दूसरा उसमें जो होता है हमारे जो गॉल ब्लैडर के जूस होते हैं जिनको हम बाइल पिगमेंट बोलते हैं उनका, और एक होता है जिसमें ये दोनों तीनों चीजें एक साथ मिक्स हो जाती है, उसमें कैल्शियम भी आ जाता है। ये उन लोगों को होता है जो हाई कैल्शियम डाइट खाते हैं पर साथ में वर्कआउट कुछ भी नहीं करते।
1: जी
0: जी मैम
1: जी। तो मतलब बहुत ज्यादा हरी सब्जियां खाने से या फिर प्रोटीन कैल्शियम जो है लेने से भी हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
0: आ सकती है मैम। एक्चुअली क्या है कि हर चीज की शरीर में जरूरत एक लिमिट तक है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: हम क्या आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, लोग जो हरी सब्जी खा रहे हैं वो दिन में तीन बार हरी सब्जी खा रहे हैं, और जो वो मतलब अपने मिल्क प्रोडक्ट ले रहा है वो दिन में तीन बार भी ले रहा है।
1: जी
0: हमें अपनी बैलेंस डाइट को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, उस वजह से हमें सबसे ज्यादा ये दिक्कतें आ रही हैं।
1: जी जी बिल्कुल सर, इस बारे में भी नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बैलेंस डाइट हमारी जो प्लेट है उसमें कितनी अकॉर्डिंग कितनी मात्रा में होनी चाहिए।
0: जी मैम बहुत जरूरी है ये तो।
1: जी तो डॉक्टर कर्णव, जब भी कोई बीमारी होती है उसके अर्ली स्टेज के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जो ये पथरी की समस्या है इस जब ये होती है तो इसके शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं वो किस तरह हो सकते हैं, कैसे संकेत हमारी बॉडी को मिलते हैं? क्योंकि कई बार होता है कि लोगों को ना स्टमक में नॉर्मल पेन होती है, कई बार वो इसको अनगैली कर देते हैं या फिर गैस प्रॉब्लम समझ के नजरअंदाज कर देते हैं, तो अर्ली स्टेज के इसके सिम्टम्स हम क्या मान सकते हैं?
0: सबसे मतलब कॉमन जो इसका सिम्टम है वो है बाथरूम में जलन होना।
1: जी
0: बहुत से लोगों को बाथरूम में जलन होती है और बार बार होती है, जैसे 10 दिन के बाद, 15 दिन या 1 महीने के बाद फिर वो दोबारा दिक्कत आती है, तो वो लोग उस चीज को इग्नोर कर देते हैं सिंपल इन्फेक्शन समझ के। लेकिन जब वही इन्फेक्शन लॉन्ग टर्म तक चलता है तो वो एक तरह से इसको किडनी स्टोन में कन्वर्ट करने में हेल्प कर देता है।
1: जी
0: और दूसरा होता है कि लोग जब यूरिन का प्रेशर आया होता है मतलब बाथरूम का वेग आ रहा है और हम उसको होल्ड करके रख लेते हैं, तो उससे भी जो है हमारे इसमें जो कचरा है वो इकट्ठा हो जाता है, वो आगे जाके पथरी में बन जाएगा।
1: बन जाता है। जी जी जी
0: जी।
1: ये छोटी
0: इसमें किसी किसी को जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है तो लोगों को बहुत मतलब 10-15% लोगों को बाथरूम में खून आता है।
1: जी
0: वो भी एक तरह से किडनी स्टोन का ही एक सिम्टम है।
1: जी जी सर।
0: लोग उसको सिंपल इन्फेक्शन समझ के इग्नोर कर देते हैं। जी जी
1: जी। तो सर जब भी कोई बीमारी होती है तो प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर माना जाता है, अगर स्टार्टिंग स्टेज में ही हम अपना ख्याल रखना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक जो वो बीमारी है वो आगे जाके नहीं बढ़ती। क्या पथरी से जी क्या पथरी से पूरी तरह बचाव कर सकते हैं हम? कुछ ऐसी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई आदतें जो हमें अपनानी चाहिए?
0: बिल्कुल मैम, पथरी से बचाव 100% संभव है। सबसे पहले तो हमें दिन में 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए।
1: जी
0: फिर दूसरा हमें जितना हो सके चाय या कॉफी इसका यूज कम से कम करना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी जैसे आजकल जो है गर्मियों का मौसम है तो इसमें हमें ज्यादा कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल जैसे हम गर्म इससे निकल के जा रहे हैं, मान लीजिए गर्मी से एकदम ठंडे एरिया में जा रहे हैं और हम तुरंत कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं तो हमें उससे भी बचना चाहिए। और हमें ज्यादा तेज नमक नहीं खाना है।
1: जी
0: और जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें सारी डाइट को सही ढंग से खाना है, एक बार हमें कैल्शियम की डाइट खानी है, एक बार हमें प्रोटीन की डाइट खानी है, तो एक बार हमें मिक्स डाइट खानी है।
1: जी जी सर। आपने
0: सबसे ज्यादा जरूरी है मैम कि हमें एक्सरसाइज पे फोकस करना है।
1: जी
0: और एक्सरसाइज इतनी जिससे कि हमारा शरीर

0: शरीर भी ना थके और हमारा शरीर जो है प्रॉपरली वर्क भी करे।
1: जी सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया इस चीज़ों को कि इसके जो अर्ली स्टेज के सिम्टम्स हैं वो क्या हो सकते हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर, जो मेडिसिन है उसके बारे में तो हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं, पर कई बार ऐसे होता है कि हम ना घरेलू जो नुस्खे हैं वो अपनाते हैं, तो पथरी को कम करने के लिए या इसकी समस्या को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए कौन से ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिनका इलाज हम घर में भी कर सकते हैं अपना के?
0: सबसे अच्छा तो मैम घरेलू नुस्खा है नींबू का पानी।
1: जी,
0: जो आदमी डेली एक गिलास नींबू पानी पीता है उसको पथरी होने की संभावना कम से कम हो जाती है।
1: जी,
0: आजकल तरबूज बहुत ज्यादा अवेलेबल है इस मौसम में, तो हम अगर जो इंसान डेली तरबूज खाएगा उसको भी पथरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
1: जी जी, मैं आपसे यही क्वेश्चन अभी पूछने वाली थी, जैसे आपने तरबूज का नाम लिया, कई बार हम बीज वाली ऐसी चीज़ें हैं, टमाटर मना कर देते हैं या फिर अमरूद मना कर देते हैं, ऐसे फल हैं जो बीज वाली चीज़ें हैं उनको खाने से भी पथरी होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
0: हाँ जी, बीज वाली चीज़ें वो नहीं खानी है जिनके बीज आपके पेट में जाके डाइजेस्ट ही ना हो।
1: जी,
0: तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, इन दोनों के जो बीज हैं वो इजीली हमारे पेट में डाइजेस्ट हो जाते हैं।
1: जी जी जी,
0: और वो ठंडे होने की वजह से हमारे लिए हेल्दी होते हैं। जी
1: जी डॉक्टर साहब,
0: तो इसमें मैम सेब का सिरका बहुत अच्छा काम करता है हमारे लिए।
1: ओके,
0: अगर कोई इंसान हफ्ते में एक बार सेब का सिरका आधा कप पानी मिला के उसको सुबह खाली पेट पिए तो उसको भी पथरी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
1: जी, तो सर अक्सर लोगों के दिमाग में एक चीज़ होती है कि जब पथरी हो जाती है तो इसका मतलब है सीधा ऑपरेशन करवाना, क्या हर पथरी के लिए सर्जरी ज़रूरी होती है? कुछ केसेस में दवाइयाँ, ज़्यादा पानी पीने जैसे आपने बता दिया है, पर जो ऑपरेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह होता है?
0: देखो ऐसा है कि हर पथरी में ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो किडनी स्टोन है वो भी 3 से 4 प्रकार की, गोल्ड ब्लैडर स्टोन है वो भी 3 से 4 प्रकार के होते हैं। तो ऐसा है कि अब सारे स्टोन में ऑपरेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे स्टोन है जो सिर्फ सिंपल दवाई खाने से और प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंज करने से ही ठीक हो जाते हैं।
1: जी,
0: जब कोई स्टोन हार्ड शेप में तैयार हो जाए और वो अपने मार्जिन फैलाना शुरू कर दे, वो शरीर के किसी ऑर्गन के साथ इन्वॉल्व हो जाए, तब हमें उसको ऑपरेशन के लिए सुजेस्ट करना पड़ता है या हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप ऑपरेशन करवा ली।
1: जी
0: जी मैम
1: जी, तो डॉक्टर कन्नव, अगर समय रहते हुए इसका इलाज ना करवाया जाए तो आगे जाने के बाद इन फ्यूचर हमारे पूरे शरीर में किस किस तरह की हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है?
0: सबसे पहले तो मैम जब कोई पेशेंट है, जो बीपी का पेशेंट है या किडनी का पेशेंट है, अगर उसका टाइम से इलाज ना हो तो उसको सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं किडनी फेल होने के।
1: जी,
0: और जो बीपी का पेशेंट है अगर उसको स्टोन का ट्रीटमेंट ना करें तो वो आगे जाके कार्डियक फेलियर में भी चला जा सकता है। जब उसमें वो कोई कॉम्प्लिकेशन, फिर जो लोग अस्थमेटिक हैं या जिनको ब्रेन में कोई दिक्कत है उनको सबसे ज्यादा खतरा है कि उनका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में वो लोग जा सकते हैं।
1: जी
0: जी
1: जी,
0: और इसमें सबसे बड़ा कारण तो किडनी डैमेज होने का होता है।
1: जी, तो अच्छा यही है कि कोई भी बीमारी अगर हमें ये पता लगती है, अर्ली स्टेज के सिम्टम पता लगते हैं, जल्दी से जल्दी उसका इलाज करवाएं हम।
0: जी मैम बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके, चाहे उसके लिए आपको दवाई की जरूरत है तो दवाई का कोर्स करें, अगर दवाई से वो चीज ठीक नहीं हो रही है तो आप ऑपरेशन की तरफ जाएं।
1: डॉक्टर कन्नव, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि जब कोई भी बीमारी से हम जूझते हैं चाहे वो ठीक भी हो जाए, पर कुछ ऐसे जो सिम्टम्स थोड़े थोड़े हमारे शरीर में रहते हैं, क्या अगर एक बार पथरी ठीक हो जाए तो दोबारा पथरी बनने के चांसेस रहते हैं?
0: अगर मैम लाइफस्टाइल और डाइट चेंज ना करें तो वो चांसेस दोबारा बनेंगे, क्योंकि ये जो भी

0: बन रही है वो हमारे डाइजेशन की वजह से, हमारे एक्सक्रीशन की वजह से और हमारे लाइफस्टाइल से उसको इन्वॉल्वमेंट होती है। मान लीजिए हमने खाना खाया और हम खाना खा के तुरंत बैठ गए,
1: जी
0: हमने अपने शरीर को वर्कआउट नहीं करवाया, तो जो खाना है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा।
1: जी
0: जब खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा वो अनडाइजेस्टेड फूड एज इट इज हमारे जूस जूसेस के साथ मिलके गॉल ब्लैडर में जाएगा और उसमें गॉल ब्लैडर का जो जूस है उसको कम काम करने देगा,
1: जी
0: तो वो जो जूस जो अंदर बन रहा है वो बाहर नहीं निकल के अंदर ही रुका रहेगा। जब वो अंदर रुका रहेगा तो वो अंदर अपने शरीर की हीट से वो हार्ड शेप में तैयार हो जाएगा, जिससे कि वो दोबारा चांसेस हो जाते हैं कि वो चीजें बन जाए। ऐसे ही हमारे किडनी स्टोन की बात है, हम मान लीजिए कि पानी कम पी रहे हैं, हम डाइट अच्छी खा रहे हैं, पानी कम पीने की वजह से हमारा शरीर तो गंदगी को बाहर निकालने के लिए कचरे को इकट्ठा कर रहा है।
1: जी
0: अब हमारा पानी कम होने की वजह से वो कचरा बाहर ही नहीं निकलेगा, तो वो दोबारा किडनी स्टोन को तैयार करने में कारण बन जाएगा।
1: जी जी बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, और कई बार मैंने सुना है और ये देखा भी है कि जब देसी दवाइयाँ पथरी के इलाज के लिए दी जाती हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने का मतलब बोलते हैं, या फिर सोडा जो है खारा वो पीने के लिए
0: हाँ
1: कहते
0: जी
1: हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो बॉडी है उसमें ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान तो होगा, ये काफ़ी हद तक ठीक है या फिर मिथ है?
0: मैम, ऐसा है कि अगर कोई किडनी पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है, उसको खारा सोडे के साथ दवाई नहीं दी जाती है।
1: जी
0: और आयुर्वेद में या देसी दवाइयों में ऐसा होता है कि हर इंसान को एक जैसी दवाई नहीं दी जाती है।
1: जी जी जी
0: और अगर हम वही बात करें कि एलोपैथी में, वहां पे कुछ हद तक ऐसा है कि कॉमन प्रिस्क्रिप्शन है, लेकिन आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद बोलता है कि हर इंसान की बनावट अलग है, तो हर इंसान की बनावट के हिसाब से उसके लिए दवाइयां अलग अलग है।
1: जी
0: और रही बात, जैसे आपने बोला खारा सोडा, आम जो कोई नॉर्मल इंसान है जिसको किडनी स्टोन है उसके लिए खारा सोडा बेस्ट काम करता है, क्योंकि वो जो यूरिन का फ्लो है उसको बढ़ा देता है।
1: जी
0: जब यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा, जो यूरिन की नालियां हैं वो थोड़ी डायलेट हो जाती हैं, तो उससे जो है स्टोन का छोटा मोटा कचरा इजीली बाहर निकल जाता है। जी
1: जी डॉक्टर कनव, आपने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया है कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कैसे ये जो पथरी की जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। जाने से पहले कोई ऐसा
0: जी
1: मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहो हेल्थ के रिलेटेड?
0: सबसे अच्छा मैसेज तो ये है कि 8 से 10 गिलास पानी सभी पिए,
1: जी
0: और इसमें सबसे अच्छा है हमारा बॉडी वेट के हिसाब से पानी पिए। 20 kg पे 1 लीटर पानी जरूरी है,
1: जी
0: तो अपना अपना बॉडी वेट चेक कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपना पानी का एक सीमा सुनिश्चित करें।
1: जी
0: दूसरा है कि अपनी डाइट पे ध्यान दें, जो आप 3 टाइम कैल्शियम की डाइट को अवॉइड करें, 3 टाइम ग्रीन वेजिटेबल्स को अवॉइड करें, 3 टाइम ही दालों को अवॉइड करें। आप सुबह कैल्शियम के प्रोडक्ट ले सकते हो, दोपहर को आप दाल ले सकते हो, शाम को आप हरी सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी
0: और सबसे ज्यादा जरूरी है मैम, शाम का खाना जितना जल्दी हो 7 से 8 बजे तक अपना डिनर कर ले।
1: बिल्कुल
0: जो इंसान 8 बजे तक अपना डिनर कर लेता है उसको ये सब लाइफस्टाइल बीमारियां कम से कम होती हैं, क्योंकि उसका सारा सिस्टम ठीक रहता है।
1: जी
0: और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी खाना खाएं उसके बाद 100 से 200 कदम जरूर चलें, चाय और कॉफी का प्रयोग थोड़ा कम करें।
1: जी डॉक्टर कनव, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल के आप हमारे साथ हमारे गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम में जुड़े और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हर तीसरे पर्सन को, बच्चों को एटलीस्ट, मतलब ये बीमारी हमें देखने को मिल रही है।
0: मैम, गॉल ब्लैडर स्टोन का मेरे पास 1.5 साल का बच्चे का केस है चला हुआ।
1: 1.5 साल का सर? अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 1.5 साल के बच्चे को ये प्रॉब्लम क्यों हुई?
0: अब मैम, जब उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हुई

0: तो उनकी काउंसलिंग में ये मिला है कि जो उसकी मदर है उनका ज्यादातर हैवी रिच डाइट खाने का रूटीन है,
1: जी
0: तो उनकी डाइट का इफेक्ट बच्चे के ऊपर जा रहा है, बच्चे का भी मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो चुका है।
1: जी जी जी
0: हम आयुर्वेद में इस चीज को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं।
1: जी
0: जी
1: जी डॉक्टर कनव, बहुत बहुत शुक्रिया
0: शुक्रिया मैम, शुक्रिया,
1: जी।
0: धन्यवाद।
1: हाँ जी दोस्तों, ये थे ए सी डॉक्टर कनव, जिन्होंने इन्ने इंपॉर्टेंट टॉपिक ते साडे नाल इनफॉरमेशन सांझी कीती। देखो उन्होंने जिन्निया भी चीज़ां दा सानू ध्यान रखने लिए किया है कि दिन दे विच 8 तो 10 गिलास आपां पानी पीना है, ते अपना जिहड़ा वेट है उसके अकॉर्डिंग पानी पीना है, ते नाल ही जिहड़ियां आपां विदाउट नॉलेज चीज़ा खाते हैं अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लंच के डिनर के इंडियंस की ये चीज़ मैं वेखी है कि रात को 9-10 बजे तक साडा जिहड़ा डिनर है वह चलता रहिंदा है, तो आप प्रॉपर जिहड़ा है अपना पेट फुल करके खाते हैं, लेकिन रात

जी दोस्तों, मजा आया गाना सुन के। नचे टप्पे जा नहीं, कोई गल नहीं जी, हजे भी तुसीं नहीं नचे टप्पे, फिर बहुत सारे साडे कोल इदां दे इंस्ट्रूमेंट ने जिन्हां दी अज आपां गल करांगे। हुण जिहड़ी धुन हैगी है, जिहड़ी रिदम है, हुण जिहड़ी मैं तुहानूं सुनाउण लगी हाँ, तुसीं सानूं वट्सअप मैसेज ते दसना है कि इह कीहड़ा पंजाबी जिहड़ा फोक आपां कह सकदे इंस्ट्रूमेंट या साज़ है। ठीक है, पहलां तां तुसीं इह ट्यून सुनो।

0: मेरुजी पहचाने कौन से स्टेट से गाना आया है।
1: लॉज लॉज आ जिहड़े नरेश जी ने सानू एक खूबसूरत अंदाज दे विच जिहड़ा साज वजा के सानू सुनाया सारिआं नूं, इन्हां ने लास्ट दे विच कहा है कि ये तुहाडे वास्ते एक सवाल ही है कि किहड़े स्टेट तों इन्हां ने सानू मैसेज कीता है। ओहो जिहड़ा सब तों पहला सानू मैसेज आया सी जिन्हां ने कहा सी कि इदां दी कोई इनफॉर्मेशन है जिहड़ी साडे नाल सांझा कीती जानी चाहिए करियर दे रिलेटेड। वैसे मैं कहिंदी आ कि बहुत सारे इदां दे सारे प्रोग्राम ने, हुण गुड मॉर्निंग जलंधर जिहड़ा प्रोग्राम है, इनफो टाइम्स प्रोग्राम हो गए, टाइम टू टाइम सारे प्रोग्राम च आपां कुछ ना कुछ इनफॉर्मेटिव जिहड़ी चीज़ां ने, जिहड़ी न्यूज़ है आपां कह सकदे हां, करियर दे रिलेटिड हो गया, कोई स्कीम दे रिलेटिड हो गया, कोई भी नवां इदां दा स्कैम हो गया, कुछ भी आपां तुहाडे वास्ते वैसे लै के आंदे रहिंदे। जे तुसीं प्रोग्राम ध्यान नाल सुणोगे तां तुहानूं पता लगेगा। फिर भी तुहाडी जिहड़ी इह तुसीं सजेशन सानूं दित्ता इहदे लई बहुत बहुत धन्नवाद। अगला जी सानूं मैसेज आया है किके धीमान संगरूर तों, इन्हां ने लिखिया है जी दिल अपना पंजाबी पंजाबीयत किन्ना चंगा हुंदा जेकर जीवन विद्यां सारियां परेशानियां स्टेटस वांग 24 घंटे बाद डिलीट हो जांदियां। हाँ ये तो है, बिल्कुल सही गल कही है इन्हां ने कि जिवें साडे आपां सोशल मीडिया ते या उदां कोई ना कोई इदां दी स्टोरी स्टेटस आपां लांदे हां ते

0: नानी का नाम ही असली जिंदगी है। इस खूबसूरत सफर दे विच एक खूबसूरत जिहड़ा पार्टनर है वह भी होना चाहिए है। फिर जिहड़ा सुख दुख संघर्ष कोई भी इदां दी सीख है, मैं कहंदी हां कि पता ही नहीं लगता जिंदगी का कदों उहनां दे नाल आपां जिंदगी बिताउंदे ने। होना चाहिए, कोई ना कोई तो होना चाहिए। अगला जी सानू मैसेज आया है अमर जी जसल प्रेम मार्केट बठिंडा चा, इन्होंने तो सूँ भेजता से नाल इन्होंने अलगोजे का जोड़ा इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम भी इन्होंने लिखा से लिखा है हैलो गुड मॉर्निंग मैम जी, माई नेम इज़ लवलीन जसलीन हरलीन पिंड, ये सारे थोड़े नाम ने लवलीन जसलीन हरलीन पिंड ताजपुर जलंधर तो। मैम जी सानू तुहाडा प्रोग्राम बहुत वधिया लगता है जी, तुसीं सारे मैनू बहुत वधिया लगते हो जी, तुसीं इन्ना टाइम कट के साडे प्रोग्राम सुनते हो तो उस विच अपनी जिहड़ी पेशकारी है अनोखे अनोखे अंदाज दे नाल सानू सुनाउंदे हो, इस प्रोग्राम दे विच हिस्सा पाउंदे हो। अगला सानू मैसेज आया है सुनील कुमार जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट सांबा तो, लिखदे ने हर कदम हर पल साथ है, दूर होकर भी हम आपके पास हैं, आपको हो ना हो पर हमें आपकी कसम आपकी कमी का हर पल एहसास है। जे कसम गलत खा ली ना, जे एक झूठी कसम खा ली अगला बंदा ना फिर हो भी सकता है। एनीवेज सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद सानू मैसेज भेजन वास्ते।
1: आवाज दी दुनिया दे दोस्तों प्यार भरी सत श्री अकाल, मैं सतनाम सिंह रखरा बागा पुराना तो जी, प्यारी बेटी शाहिन तुहानू भी प्यार भरी सत श्री अकाल। बेटी अज आकाशवाणी FM रेनबो बधाई दा पात्र है जो कि अज टेलर मास्टरां दा दिन मना रहा, जियां कि टेलर डे मना रहा है
0: जी।
1: क्योंकि मैं भी इस किते विच तकरीबन 60 साल तो सेवा निभा रहा है, तो सानू बहुत खुशी हुई है कि अज आकाशवाणी टेलर डे मना रहा है। मैं तुहानू एक याद सांझी कर लगा है, मैं आकाशवाणी दे स्टेशन दे उत्ते गया, जदों एंट्री गेट दे उत्ते मैं गया ते उन्होंने मेरे बारे सारा कुछ जाणिया, मैनू कहिंदे की जॉब करदे हो तुसीं, क्योंकि मेरी टोरी इहो जिही बना के रखी हुई सी। मैं कहा जी मैं TM साहब है ते मैं डायरेक्टर साहब नूं मिलना है, ते उन्होंने अंदर मैसेज भेजा वी TM साहब आए है ते डायरेक्टर साहब मैनू स्पैशल गेट ते लैण वास्ते अंदर आए। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ TM ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜੋਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ TM ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਅਦਾਰਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ TM ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖਰਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
0: ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। TM ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਰਿਪੀਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਇਸ ਨੋਟ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ।
2: Hello, दिल अपना पंजाबी।
0: Hello जी।
2: आरजे मैडम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सारे दोस्तां नूं प्यार भरी नमस्कार। मैडम जी अज तुसी टॉपिक लिया है साजवाज दा, ते मैडम जी सानू ता ढोल ते ढोलकी पसंद वा। ढोल ते नचना ते ढोलकी वजाउणा ए बहुत सोहना सानू पसंद है मैडम जी। किते कीर्तन वगैरा हुंदा है ते भजना दे नाल ढोलकी जरूर बजाई दी है। ते नाल मैडम जी मैं तुहाडे नाल इक गल ते इक विचार सांझा करदी हां। मैं कल जा रही सी मंदिर, रस्ते दे विच बस स्टैंड रोड दे उपर दो लड़के आ रहे सीगे ते नाल सीगा आटो वाला। ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਟੋ ਚਲਾਈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ

हाँ जी, की हाल चाल ने? कहिंदे है बुध काम शुद्ध हुंदा है, ते मेरा ता अज दा बुधवार दा दिन बहुत ही वधिया है, क्योंकि तुहाडे नाल गलबात करन दा मौका जो मिल गया जनाब। ट्यून इन कीता है तुसीं 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम गीत बहार दी शुरुआत हो चुकी है जी। मैं हाँ जी तुहाडी अपनी साक्षी तुहाडे नाल, मैं क्या जी नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल ने जनाब? आई होप तुसी सारे ही अपनी अपनी जगह ते ठीक होवोगे। ते प्रोग्राम दी शुरुआत जिहड़ी हुंदी है ना, आंदियां ही मतलब अपने दिल दी गल दे नाल मैं तुहाडे नाल करदी हां कि जो दिल दे विच चल रहा हुंदा ना, वह दिल करदा कि फटाफट तुहाडे नाल शेयर कीता जावे। सो कहिंदे इट्स गोइंग टू बी हार्ड बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। मतलब कुछ चीज़ां लाइफ दे विच जदों असीं उन्हां दी शुरुआत करदे हां मुश्किल हो सकदियां ने, औखियां हो सकदियां ने, पर नामुमकिन नहीं हो सकदियां। सो इसे पॉजिटिव थॉट दे नाल अज प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां जी। मैं क्या जी स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी जिथे भी हो तुसीं, ते नाल ही नाल मैं क्या जी फिर लवली जे इस म्यूजिकल ट्रैक दे नाल प्रोग्राम गीत बहार दी शुरुआत होंदी है। तो इदा ही बने रहो 102.7 FM रेनबो ते, प्रोग्राम इंजॉय करते रहो गीत बहार।

और डब कीती सी आर्टिस्ट मोना घोष शेटी ने। सो गीत बहार दे विच गल्लां जिहड़ियां ने तुहाडे नाल इदां ही चलदियां रहणगियां कि एक छोटी जी शॉर्ट एंड क्रिस्पी स्टोरी जिहड़ी है तुहाडे नाल शेयर करांगी। फिलहाल हुण शेयर कर रही हां जी एक गाना रेखा भरतवाज की आवाज़ दे विच, बहुत ही प्यारा जिहा म्यूजिकल ट्रैक है, तुसीं करो जी इंजॉय। इदां ही बने रहो 102.7 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

वंस अगेन वेलकम बैक है जी ट्यून इन के तहत 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार ते मैं हाँ जी तुहाड़ी अपनी साक्षी तुहाड़े नाल भाई गल चल रही थी कि हुन आंदे आई तुहाड़े नाल एक शॉर्ट एंड क्रिस्पी जी स्टोरी तुहाड़े नाल शेयर की जाएगी। कहानी है जी दो दोस्त ते उन्हां दे एक सपने दी। गर्मी दी छुट्टियां चल रही सी ते रमन ते रवि हर दिन क्रिकेट खेलते सन। रमन सिर्फ मज़ा करता सीगा ते जदकि रवि जड़ा ना रोज़ थोड़ी देर दे लई प्रैक्टिस भी करता सी। एक दिन स्कूल दे विच क्रिकेट दा मैच होया ते रवि अपनी लगातार प्रैक्टिस कारण बहुत ही वधिया खेलिया जदकि उहदी टीम जिहड़ी आ उह जित भी गई ते रमन जिहड़ा सी ना उह समझ गया कि केवल जिहड़े मतलब सपने जिहड़े हुंदे ने ना सिर्फ देखण नाल नहीं सफलता मिलती बल्कि उन्होंने लिए हर रोज़ जी है थोड़ी थोड़ी मेहनत थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जी है बहुत ज़्यादा जरूरी होंगी है। तो उस दिन तो ही मतलब उन्हें अपने मन के धार लिया कि हूँ तो मतलब अपने लक्ष्य न हासिल करके रहना है तो हर रोज़ जी मेहनत असी जरूर करनी है। सो इस कहानी के मैसेज की गल करी जाए तो यही है कि व्डे सपने उदों ही पूरे होंगे है जो उन्होंने लिए असी लगातार जी मेहनत है वह करते रहने। कंसिस्टेंसी लाइफ दे विच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गल्लां तुहाडे नाल गीत बहार दे विच इदां ही चलदियां रहणगियां। ट्यून इन करके रखो तुसीं इदां ही 102.7 FM रेनबो प्रोग्राम गीत बहार करदे रहो जे इंजॉय मेरे यानी कि साक्षी दे नाल। अगला गीत आ रहा है फ्रॉम द मूवी बर्फी तो

0: जी लाइव फोन इन प्रोग्राम पंजाबी तड़का दी शुरुआत हो चुकी है। ट्यून इन किया है तुसी 102.7 FM रेनबो ते मैं हाँ जी थोड़ी अपनी साक्षी थोड़े नाल। मैं क्या जी नमस्कार सत श्री अकाल की हाल चाल ने जनाब। सो साडे कॉलरस जिहड़े ने फटाफट सानू नंबर मिलांदे ने। साडा नंबर है 0181 23 42 174 0181 23 42 174 है साडा नंबर है। ते नंबर मिला के अज ते साडे जिहड़े पहले कॉलर दोस्त ने प्रोग्राम दे विच शामिल होए ने, करदे आ उहनां नाल गल्लबात। सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल मैम,
0: की हाल चाल ने, कौन बोल रहे हो जी तुसी?
1: मैं जी कुलदीप सिंह बोल रहा, पिंड दादियां खोर जिला लुधियाना।
0: कुलदीप सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा प्रोग्राम दे विच।
1: हां जी मैम, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत जी।
0: जी होर की हाल चाल ने?
1: वधिया हाल चाल है जी, पहली कॉल लग गई।
0: हां जी सानू भी बहुत वधिया लग रहा है थोड़े नाल गलबात करके। होर की करदे हो तुसी?
1: मैं तो खेतीबाड़ी करदा जी, विजा करना था।
0: अच्छा जी,
1: हां जी।
0: ते गर्मी दे मौसम दे विच खेती करदे होए केड़ियां-केड़ियां चीजां ने जिन्हां दा ध्यान रखना पैंदा कि गर्मी ना लगे?
1: मैम गर्मी च ठंडे ठंडे काम कर लो जी।
0: अच्छा जी,
1: धुप च ना करो फिर बीमार पै जाएंगे, फायदा कोई नहीं।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। ते ठंडे ठंडे तक सारे काम हो जांदे ने सारे?
1: हां जी हां जी।
0: ठीक है जी, फिर आज केड़े गीत दी फरमाइश लेके आए हो कुलदीप जी?
1: मैम गाना पसंद है जी कुलदीप मानक दा, गाने दे बोल है जी मिठियां छड़ियां जी कुड़ियां।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम दे विच शामिल होन दे लई। ते कुलदीप जी ने कुलदीप जी दे ही गाने दी फरमाइश कीती है। कुलदीप मानक दी आवाज दे विच गाना आ रहा जी तुहाडे रेडियो सेट ते।

0: वंस अगेन वेलकम बैक है जी ट्यून इन किता है तुसी 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा जी लाइव फोन इन प्रोग्राम पंजाबी तड़का जिथे थोड़े पसंद दे पंजाबी फरमाइशी गीत जड़े ने इस प्रोग्राम दे विच शामिल किते जांदे ने ते प्रोग्राम दे विच तुसी शामिल किदा होने ने अपने गीत किदा शामिल करने ने ओदे लई साडा नंबर है जी 0181 23 42 174 यानी कि 0181 23 42 174 है साडा नंबर है ते नंबर मिला के साडे अगले कॉलर दोस्त प्रोग्राम दे विच शामिल होए ने करदे उहनां नाल गलबात नमस्कार जी सत श्री अकाल
1: हेलो मैडम जी सत श्री अकाल जी ते नमस्कार जी
0: कौन बोल रहे हो जी तुसी
1: मैडम जी सन्नी भगत बोल रहे हैं भार कैंप जलंधर तो
0: जी सनी जी बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा प्रोग्राम दे विच
1: मैडम जी ताडा बहुत बहुत स्वागत है जी भार कैंप विच जी
0: हाँ जी जी होर की हाल चाल ने
1: बस वधिया मैडम जी बाबा जी की कृपा जी काम करंदे हैं
0: ठीक है
1: प्रोग्राम ताडा सुनंदे हैं जी
0: अच्छा जी ठीक है जी ते फिर गर्मी दे मौसम दे विच काम कार ठीक चल रहे ने
1: हाँ जी मैडम जी काम कार बहुत वधिया चल रहा है नाल नाल पानी भी पाई दा है अपने डोगियां नू हो गया
0: पशु पक्षियों का भी ध्यान रखते हो इस गर्मी के मौसम बेजुबाना ले भी काम कर रहे हो बहुत ही वधिया गल है हां जी हां जी तो फिर आज केड़े गीत की फरमाइश लेके आए हो
1: गीत मैंने अरदास मान जी सुना रहे गल करे मतलब
0: नहीं अच्छा जी किदे मतलब की गल करनी है तुसी इस गीत राही
1: ਇਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
1: ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਸਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗਾਣਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: स्कीम दे टैली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता ते जागरूकता प्रोग्राम नाल जुड़ो। कानूनी मदद टैली लॉ ते टोल फ्री नंबर 1-44-54 ते वेबसाइट www.tallylaw.in तो प्राप्त की जा सकती है।
1: छोटा भरा है ना, बहुत शरारती है। कॉलेज विच मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा नु दिखाउंदा सी। कल मैं लाइट ते बिल ते जीरो अमाउंट वेखी। मैं सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किता होगा, नहीं तो जीरो बिजली बिल किवें पॉसिबल है। पूछया ते आखन लगा, वीर जी सब ऊपर वाले दी मेहर है, सोलर पैनल है ना। मैं क्या, ओहे ठीक है पुत्र।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।

0: Once again, welcome back hai ji, tune in kita hai tusi 102.7 FM Rainbow te program chal reha ji Punjabi Tadka live phone in program te tuhadi farmaishan de Punjabi geet program de vich shamil karke bahut hi vadhiya lag reha hai. ते अगली फरमाइश लैके साढ़े अगले कॉलर दोस्त प्रोग्राम दे विच शामिल होए ने, करदे आ उहनां नाल गलबात. सत श्री अकाल जी.
1: सत श्री अकाल मैडम जी.
0: जी कौन बोल रहे हो जी? तुसी
1: रविंदर कुमार कैंबो गुराया तो बोल रहे हैं मैडम
0: जी. रविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दे विच.
1: थैंक यू मैडम, तुहाडा भी स्वागत है.
0: अच्छा जी, होर की हाल चाल है?
1: हाल चाल बहुत वधिया. अज वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जा रहा.
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी.
1: इस मौके ते मैं कहना चाहना के सब नू साइकिल थोड़ा बहुत जरूर चलाना चाहिदा
0: जी,
1: क्योंकि अपनी सेहत तां ठीक रहूगी ते नाल दी नाल वातावरण की सेहत भी बहुत वधिया रहूगी. इस करके मैं कहना के साइकिल एक दिन ऐसा रखो के कहो तुसी मैं अज कोई वहीकल नहीं चलाना, सिर्फ साइकिल चलाना.
0: बहुत ही वधिया मैसेज.
1: लखा लीटर जिहड़ा तेल आ ओ ओदी बचत हो सकदी है.
0: बिल्कुल,
1: मैं ते यही कहना जे मतलब जे जरूरत होवे ना उत्थे बाइक दी वरतों करो, नहीं तां साइकिल चलाओ ते अपने देश नूं भी तरक्की ते ले जाओ ते वातावरण नूं भी जिहड़ा शुद्ध बनाओ. ये दोनों चीजां नाल जुड़ियां होईयां जी.
0: जी रविंदर जी बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिता. अज असीं गल भी कीती सी अपने प्रोग्राम दे विच कि अज वर्ल्ड बाईसाइकल डे मनाया जा रहा है, मतलब साइकिल चलाण दे नाल साडे पैसे बचदे ने, साडा वातावरण साफ सुथरा रहिंदा है ना, ते साडी सेहत भी वधिया रहिंदी है.
1: मैं मैडम जिंदगी विच अज तक कोई बाइक नहीं चलाई, मैं साइकिल ही चलाया अज तक जिंदगी च 65 साल हो गए ते मैनूं इस गल दी खुशी है कि मैं हजारां लखां लीटर अपने देश दा जिहड़ा है ओह पेट्रोल जिहड़ा ओह बचाया है.
0: बहुत ही वधिया गल जी.
1: बाकी इदां के सब नूं मतलब कोशिश करनी चाहीदी जदों इदां दी कोई भी मतलब जिदां हुण शॉर्टेज चल रही है ना
0: जी जी जी,
1: ते देश दी खातर तां लोक जिहड़े अपनियां जानां भी दे दिंदे आ.
0: बिलकुल,
1: असीं इक बाइक जां होर कोई चीज नूं नहीं त्याग सकदे गे, अज साइकिल चलाउणा पूरा दिन.
0: बिलकुल,
1: इक दिन हफ्ते दा ही रख लो. चलो
0: बहुत वधिया,
1: इक दिन भी रख लोगे ना हफ्ते दा, फिर भी तुहाडा जिहड़ा लखां लीटर तेल आ ओह इक दिन दा बच सकदा है.

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

वंस अगेन वेलकम बैक है जी। ट्यून इन के तहत उसी 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है जी, होम स्वीट होम। ते मैं हाँ जी तुहाडी अपनी साक्षी तुहाडे नाल। ते गल चल रही सी गाने तो पहला कि जिहड़ा खरबूजा है इस गर्मी दे मौसम दे विच, ठंडा ठंडा मिठा मिठा खरबूजा खाण नूं मिल जाए ना तो शरीर दे अंदर एक वक्री ही तरोताज़ा सानूं महसूस हुंदी है। ते ज़्यादातर असीं अक्सर की करदे हां कि खर खर

0: खूबसूरत जे सुरादी महफिल सजी हुई है, प्रोग्राम चल रहा है जी मिड डे मेलोडीज। ट्यून इन किया है तुसी 102.7 FM रेनबो ते मैं हाँ जी तुहाडी अपनी साक्षी तुहाडे नाल। अगला गीत जो आ रहा ना तुहाडे मूड नू लिफ्ट अप करन दे लई, तुसी उदास हो ते यह गीत जिद्दां ही सुनोगे ना मतलब तुहाडा मूड एकदम मतलब तुसी कह सकते हो वधिया जिहा हो जाएगा। झुमरू मूवी का यह गीत जो कि 1961 रिलीज़ हुई सी, ते गाने की आवाज़ है किशोर दा ते आशा जी की। बहुत ही खूबसूरत जहा गीत, इदा ही बने रहो 102.7 FM रेनबो ते, प्रोग्राम चल रहा है जी मिड डे मेलोडीज।
1: ए जो मेरे जो

प्रोग्राम चल रहे जी मिड डे मेलोडीज। कहते हैं सफलता के गगन छूकर धरा पर लौट आएंगे, सफलता के गगन छूकर धरा पर लौट आएंगे, थकन से चूर पंछी शाम को घर लौट आएंगे, थकन से चूर पंछी शाम को घर लौट आएंगे। अगला गीत हमराज मूवी तो महेंद्र कपूर की आवाज़ के विच आर्या जी तुहाडे रेडियो सेट ते दही ट्यून इन करके रखो 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ का खूबसूरत जहा सफ़र इदा ही चलता रहेगा।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे समझे।

तेरे प्यार का क्या हिसाब तुम, तेरे प्यार का क्या हिसाब तुम, तेरी मोहब्बत को क्या खिताब तुम। कोई अच्छा सा फूल होता, कोई अच्छा सा फूल होता तो तुम्हें ज़रूर पेश करता, मगर जो खुद ही गुलाब हो उसे क्या गुलाब तुम। मेरी शायरी सुन के अंदाज़ा तो तुहानू हो ही गया है कि प्रोग्राम दिल आज शायर की शुरुआत हो चुकी है। मैं हाँ जी थोड़ी आर जे दोस्त सुरभी, प्रोग्राम विच आज दिल दिया गल्ला शायरी दे रूप विच करन एक बार फिर तो आ गई हाँ। दोस्तों, कई बार जिंदगी विच कुछ ऐसे पल आते ने जदों ना दिल दे अंदर बहुत कुछ चल रहा हुंदा है। कदे कोई याद, कदे कोई अधूरी ख्वाहिश, कदे किसी की मुहब्बत ते कदे किसी का विछोड़ा। अजिहे पलां दे विच दिल गल्ला नहीं करता, शायरी करता है। सो तां ही कहंदे ना कि दिल दी ना अपनी एक भाषा हुंदी है। ये ना किसी किताब विच मिलती है ते ना किसी स्कूल दे विच सिखाई जाती है। ये तां तजर्बियां, जज्बातां अते यादां तों बनदी है। सो दो लाइनां इत्थे मैं होर कहना चाहूँगी कि कुछ गल्लां अज भी अधूरियां ने, कुछ गल्लां अज भी अधूरियां ने, कुछ सुपने अज भी जिंदा ने। दिल अज शायर इसलिए है क्योंकि कुछ जज्बात अजे भी जिंदा ने। सो प्रोग्राम दे विच मेरी शेरो शायरी तो चलती रहेगी, पर कल्ली मेरी शेरो शायरी ना कुछ नहीं बनना, इहदे लई तुहानू मेरा साथ देना पैना। ये साथ किद्दां दवोगे तुसीं मेरा? अपनी दिल दियां गल्लां, अपने जज्बात शायरी दे रूप विच तुसीं मैनू भेजोगे। ते भेजनी किहदे च है? नंबर है जी वट्सअप दा 9855 10 10 10। ये वट्सअप नंबर है 9855101027। मैनू इस नंबर ते तुसीं अपनी शायरी भेजनी है। और याद रखियो कि जे ये शायरी तुहाडी अपनी है ते तुसीं खुद लिखी है ते बहुत वधिया गल है, इहनू पढ़ के मैनू भी बहुत मज़ा आएगा। अगर तुसीं किसी होर दी शायरी मैनू भेज रहे हो ना, तो इस गल का ध्यान रखियो कि उन्हां दा भी नाम जरूर जिहड़ा है तुसीं ओ मैनशन करो। और ये भी ध्यान रखो कि असीं पॉजिटिव पॉजिटिव गल्लां करिए, प्यार दियां गल्लां करिए। ते कोई शायरी दे जरिए अपनी दिल दी गल कहना बड़ा वधिया हुंदा है ना, ते इहे मौका है अपनी दिल दी गल शायरी दे रूप विच तुसीं कर सकते हो। मैं हाँ तुहाडी दोस्त आर जे सुरभी, ते हुण इंतज़ार करूँगी तुहाडा, तुहाडे मैसेजिस दा, तुहाडी शायरी दा। इस गज़ल तो बाद फिर पेश करांगी तुहाडियां लिखियां लिखियां प्यारी प्यारी शायरियां।

एक बार फिर तो सब का स्वागत है जी प्रोग्राम दिल आज शहर है। मैं हाँ थोड़ी यार जी दोस्त सुरभि। सो प्रोग्राम विच मेरे लिसनर्स ने आज शहर बन के अपनी शायरी भेजनी शुरू कर दीती है तो मैं भी बिना देर किते इसनों पेश करती हाँ। कहंदे ने वे सजना तेनू तक तक रूह ना भर दी वे सजना तेनू तक तक रूह ना भर दी वे बस एक तू ही निमाणी दे दिल का धरती वे तेनू दिल दे विच वसा लवा जा फिर पलका ते बिठा लवा जिंद हर पल होके भरती वे कदे लीका मारा कंधा ते नाल पावा ऐसियां ना मैं रही कार ते कर दी वे साडा

वेलकम बैक प्रोग्राम दिल आज शायर है। मैं हाँ जी थोड़ी आठ ही दोस्त सुरभि। प्रोग्राम विच साडे जिहड़े शायर साडे नाल जुड़े हुए ने, यानी कि साडे लिसनर्स, उन्हों दी शायरी पहला मैं थोड़े अगे नज़र करांगी जी। साइकिल की गल हो रही है, बड़ी खास गल है। देखो, साइकिल्स दी गल खास होनी भी चाहिए है, क्योंकि उन्हें जिन्ना साडा साथ दिता ना जिंदगी, मैं लगता होर किसी ने नहीं दिता होगा। बाकी सब चीज़ा तो बड़ी जल्दी खराब हो जाती है, पर साइकिल सिर्फ अपनी चेन उतार के ही दसता से कि मैं थोड़ा जहा खराब होया, बट उदा खराब नहीं हों, या तो वो टायर की हवा निकल जाती सी। सो प्रोग्राम में एक होर जी ना साइकिल के उत्ते शायरी आ चुकी है, साइकिल दिवस को लैके। कहते ने साइकिल की रफ्तार में सेहत का पैगाम है, साइकिल की रफ्तार में सेहत का पैगाम है, हर पैडल के साथ खुशियों का नया मुकाम है। धुआं नहीं प्रदूषण नहीं, बस सफ़र का सुकून है। धुआं नहीं प्रदूषण नहीं, बस सफ़र का सुकून है।

प्रोग्राम विच स्वागत है जी, जिदा नाम है दिल आज शायर है। मैं हाँ जी थोड़ी आठ ये दोस्त सुरभी और प्रोग्राम का सफ़र बहुत खूबसूरत चल रहा है थोड़े सारे दे नाल, जिते असी अपने दिल दियां गल बात शहरी रूप दे विच एक दूसरे नाल सांझियां कर रहे हैं। सो कहिंदे ना कि दिल दी आवाज़ जिहड़ी है ना, कई बार असी किसी कोई गल कहनी हो ना, असी नॉर्मल लफ्जा विच नहीं कह सकते, जिवें कि मैं तो ना इस टाइम गल कर रही हूँ इस तरीके ने नहीं कह पाते। कई बार सानू ना इनडायरेक्ट वे लभना पैंदा है, तो शायरी तो वधिया कोई रूप हो ही नहीं सकता जिथे असी अपनी गल नू इस अंदाज ना कहीए कि अगले नू समझ भी आ जाए तो किसी नू पता भी ना चले। ये होगी ना चलाकी थोड़ी जी, पर नहीं, कई बार जिहड़े लफ्ज़ ने और जज्बात ने पता चल जाते हैं, पर यह सोहना तरीका है अपनी गल कहन का। इसी दे नाल साडे जिहड़े शायर ने, मतलब कि साडे लिसनर्स, वह भी सानू भेज रहे ने, कहंदे ने इश्क इंसान दे नाल कीता तां असी बदनसीब हो गए, इश्क इंसान दे नाल कीता तां असी बदनसीब हो गए, इश्क खुदा नाल कीता तां असी उसदे करीब हो गए, पल्ला छड के असी दुनिया दा जदों दा उसदा पल्ला फड़िया, पल्ला छड के दुनिया दा जदों दा उसदा पल्ला फड़िया, तां सच जानी उदों दे साडे चंगे नसीब हो गए। ई पी जी सी सानू सुखा बडाली सुखदीप सिंह तिमान, पिंड बडाली नेड़े कुराली शहर ज़िला रोपड़ तो। गल तो सही है जी, जदों असी रब दा पल्ला फड़ लैंदे हाँ ना, तो फिर दुनिया की हर चीज़ सोहनी लगन लग जाती है, तो टेंशन ही मुक जाने हैं। लो एक होर सानू शायरी पहुँच चुकी है, साहिर लुधियानवी होना दे वलों लिखी गई है शायरी है जो सानू साडे लिसनर ने भेजी है। कहंदे ने फिर खो ना जाए हम कहें, फिर खो ना जाए हम कहीं, दुनिया की भीड़ में मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। बहुत खूबसूरत साहिर लुधियानवी जी, उन्होंने बहुत कुछ लिखे, बहुत वधिया लिखे। जज्बात जिहड़े ने ना, जो उन्होंने निकल के लिख के सामने आते सी, तो इंज लगता सी साडिया ही दिल दिया गल्लां ने। प्रोग्राम दिल आज शायर चलता पिया जी, सफ़र दे विच तुसी मेरे नाल अगर हुणी आए हो साडे प्रोग्राम सुन रहे हो तो तुसी भी जोड़ सकते हो। साडा नंबर है 9855 1010027, यह साडा वट्सअप नंबर है। इस नंबर ते तुसी सानू अपनी शायरी भेज सकते हो जी।

प्रोग्राम चल रहा सी दिल आज शायर है। इस प्रोग्राम का समा जड़ा है वह हूँ समाप्त होने वाला है। दिल तो नहीं कर रहा जाना, पर जाना पेगा। जाते जाते दो लाइना भी मैं जरूर कहूँगी कि कहें मुहब्बत जदों रूह तक पहुँच जाए ना, जो मुहब्बत रूह तक पहुँच जाती ना, फिर मिलने की ख्वाहिश भी घट हो जाती है, क्योंकि एहसास ही काफ़ी होंगे ने। सो साइया तेरी याद का नशा भी कमाल है, ना उतरदा है ना जीन दिंदा है। तेरे इश्क ने मैनू इन्ना मेर कर दिता है, हुन तनहाई विच भी मैं खाली नहीं रहिंदी। सज्जना दे प्यार ने कहिंदे इन्ना दीवाना कर दिता है कि हुन तक कोई सुधबुद्धि नहीं रही है। प्रोग्राम चल रहा सी दिल आज शायर है। इस प्रोग्राम विच असी मिल के शेरो शायरी की है जी, तुसी ज़्यादा की, मैं थोड़ी घट की है, और असी इंजॉय किया, मैं किया जरूर है, बट मैं उम्मीद कर दी कि तुसी भी जरूर इंजॉय किया होएगा इस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम दे विच हुन तुसी मैनू इजाजत दो जी, पूरे 4 बजे मैं फिर तो मुड़ के आऊँगी जी प्रोग्राम लैके हैलो जलंधर, उत्थे असी अज बड़ी सारिया गल्लां करनियां ने। इस दे नाल मैं तुहानू दसवां पूरे 3 बजे प्रोग्राम तुहाडी सेहत नाल जुड़िया होया आएगा जी रेडियो डॉक्टर। उस प्रोग्राम नू जरूर सुनो, सेहत का ध्यान रखो, गर्मी का मौसम है, हाइड्रेट होंदे रहियो जी, पानी खूब पियो जी, ते ना दे नाल बाकी दा भी ध्यान रखो जी। सो फिलहाल मैनू दो तुसी हुण इजाजत, अपनी आज दो सुरभी नू प्रोग्राम दिला शायर का सफ़र इत्थे ही समाप्त होंदा है।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शिल्पा गुप्ता और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। तपती धूप, बढ़ता तापमान और बदलती खानपान की आदतें, ऐसे में सबसे ज़्यादा असर पड़ता है हमारे पाचन तंत्र पर। अपच, गैस, एसिडिटी, दस्त और भूख कम लगना जैसी समस्याएं इन दिनों आम हो जाती हैं। ऐसे में यूनानी चिकित्सा पद्धति किस तरह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है समर्स डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिंस। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद अहमद खान, यूनानी एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में।
2: बहुत शुक्रिया आपका।
1: और साथ हैं डॉक्टर सूफिया उत्साही, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यूनानी मेडिसिंस, CGHS। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हमें आपने याद किया।
1: दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम फ़ोन इन प्रोग्राम है, जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारा फ़ोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से

0: घर से फोन कर रहे हैं तो 01 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करेंगे गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याएं और यूनानी चिकित्सा पर अपने विशेषज्ञों से। तो डॉक्टर सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं?
1: असल में सबसे बड़ी वजह होती है बाहर का खान पान और ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाने से। आमतौर से होता क्या है कि गर्मियों में जो है बहुत जल्दी खाना जो है हमारा अगर बासी हो जाता है तो ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। उसमें जो है डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग, इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है। मुख्तसर यह है कि हमें इससे बचना चाहिए। एक तो ज़्यादा तली हुई चीज़ें जिसमें ज़्यादा चिकनाई हो, घी तेल, वो कम इस्तेमाल किया जाए। और बाहर के जो हैं, जो भी आदमी घर से निकला है, उसको ज़रूरत पेश आई, भूख लगी, तो देख ले कि खाना सही है या नहीं, सही जगह है। कम खाए लेकिन ताज़ा और सादा खाना खाए, इसकी ख़ास कोशिश की जाए।
0: तो कुछ ऐसी चीज़ें जो वो साथ लेके अपने चल सकते हैं कि अगर हम बाहर का खाना ना खाना चाहें, जनरल में वो ले सकते हो?
1: देखिए, सबसे बढ़िया तो ये है कि हमारे यानी नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से चना और जौ का सत्तू जो है बहुत मशहूर है, और पानी आम तौर से हर जगह मिल जाता है, या फिर पानी भी साथ लेके चले तो आदमी आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकता है। ये इस सीज़न की बहुत बढ़िया यानी ग़िज़ा है, कह लीजिए न्यूट्रिशनल चीज़ है ये। इसका एक बड़ा फ़ायदा यह है कि बॉडी के अंदर जो इस वक्त जो मौसम है वो मिजाज के एतबार से गर्म और खुश्क है, तो ये जो है शरीर को तरी पैदा करता है।
0: जब हम मौसम की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर सूफी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम में सबसे अधिक कौन कौन सी पेट संबंधी समस्याएं हैं जो देखने को मिलती हैं?
2: आजकल तो गर्मी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स पेशेंट्स लेकर आते हैं, क्योंकि उसमें लूज मोशन का है, गर्मी लग गई, बहुत ज़्यादा उनको डायरिया हो गया एंड लूज मोशन होते हैं, उस टाइप के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी या पानी नहीं लेते हैं या इन सब चीज़ों को लेना चाहिए। तो इस टाइप के ज़्यादा हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कि जिनको गर्मी की वजह से लूज मोशन एंड डायरिया एंड वोमिटिंग इस टाइप से हमारे पास आते हैं, और उनको पानी और ORS, नेबर, लेमन वगैरह, इसको एडवाइस किया जाता है कि इसको आप पानी में लीजिए, पुदीना लीजिए, सारी चीज़ों को लीजिए, जिससे उनको थोड़ा सा रिलीफ रहता है। और हमारे पास और भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जिसको हम देते हैं, पुदीने का पानी होता है, अजवाइन का होता है, ये सब चीज़ें हम उनको ऐड करके देते हैं
0: जिससे गर्मी में ठंडक का एहसास रहे,
2: ठंडक का एहसास हो।
0: जी, इसमें हम बात ये भी करेंगे कि यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है और किस प्रकार पाचन तंत्र को संतुलित रखती है, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याएं और यूनानी चिकित्सा पर। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है और ये किस प्रकार पाचन तंत्र को संतुलित रखती है।
1: यूनानी चिकित्सा पद्धति सदियों पुरानी, इस एक साइंटिफिक बेस पर इसको हकीम बुकरात ने, जिन्हें हिप्पोक्रेट भी कहते हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की। हालांकि पहले से चल रही प्रचलन तो बहुत पहले से रहा, लेकिन उन्होंने बाकायदे उसको एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, ख़ास तौर से उन्होंने खिलत और मिजाज। तो वो कहते हैं इसका बैलेंस अगर रहता है तो शरीर में कोई तकलीफ नहीं होती, और जब ये डिसबैलेंस होते हैं चारों खिलत और मिजाज, तब जो है जाके तकलीफ बढ़ती है। ज़ाहिर है गर्मियों का सीज़न है, इसमें उमूमन जो है खुश्की और गर्मी, ये दोनों चीज़ें बढ़ी हुई होती हैं। तो इस लिहाज से हुक्मा इसके यानी जो ख़ास तवज्जो दिया उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम पर, और उसके लिए उन्होंने माना है कि अगर जिगर हमारा सही काम कर रहा है, लीवर, तो समझिए कि हम बिल्कुल फिट रहेंगे। तो लीवर से संबंधित जो दवाएं हमारे पास में हैं वो बहुत यानी अच्छी तादाद में मौजूद हैं, और इसके बहुत सारे क्लासिकल दवाएं हैं, जैसे माजून दबिदुर्द है, जवारिश नारायण है, जवारिश आमला है, ये सब दवाएं बहुत सारी जिगर की हैं जो काबिज़ भी हैं, यानी जैसे किसी को डायरिया हो गई या डिसेंट्री हो गई तो उसमें इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर जवारिश नारायण का बहुत बड़ा रोल है। तो इसी तरीके से जो है इसमें चहार तुख्म का भी इस्तेमाल होता है। चहार तुख्म जो होता है, चार किस्म का बीज होता है, जिसमें यह है कि तुख्म बारतंग है, तुख्म रेहान तुलसी का बीज, इसब गोल मुसल्लम और तुख्म कनौज। तो इस चारों बीज एक साथ जो है जमा करके किसी को भी पेट में गर्मी है, दस्त है, मरोड़ है, IBS की शिकायत है, उन सूरतों में जो है हम इसे इस्तेमाल कराते हैं। सादे पानी से एक चमचा निकल लिया। इसके अलावा जो है हुक्मा ये मान के चलते हैं कि ये इन्फेक्शन में भी काम करेगा। कई बार ऐसा होता ना कि डिसेंट्री हो गई, इन्फेक्शन के सबब हुई है, तो उसमें हम जो है अर्क अजीब भी देते हैं। अर्क अजीब जो है ये बहुत बेहतरीन फार्मूला है। इसमें जो है सत्य पुदीना है, सत्य अजवाइन है और सत्य काफूर
2: है।
1: इन तीनों को बराबर बराबर मिला लेते हैं, एक बेहतरीन घोल तैयार हो जाता है। इसकी दो बूंद आधे कप पानी में पी लीजिए तो इससे आपको फौरी तौर पर एक यानी जो भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस है, डिसेंट्री है, इन्फेक्शन है, उन सब में काम करेगा।
0: तो ये रोज़मर्रा में ले सकते हैं या तकलीफ हो तभी इसका
1: बेहतर है? तकलीफ हो तो लें
0: जी,
1: क्योंकि जाहिर दवा का मतलब है

0: और गज़ा दो अलग चीज़ें हैं।
1: जी
0: तो इलाज बिल गज़ा हमारे यहाँ बहुत मशहूर है कि ऐसे वक्त में हम वो चीज़ खाएं जिससे दवा की ज़रूरत है पेश आए। तो जाहिर है कि दवा जो है जब ज़रूरत हो तो भी ली जाए।
1: तो दर्द में ही दवा ले, लेकिन रोजमर्रा में जो ये गर्मी है इससे बचने के लिए हम क्या करें कि जिसे बीमारी ना पड़े?
0: हाँ, इसके लिए तो एक बहुत मोटा सा फार्मूला है, आम आदमी जानता है कि सादा खाओ और ताज़ा खाओ और कम घी तेल और मसाला इस्तेमाल करो। मौसम के जो फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कुदरत ने जो हमारे लिए एक वरदान के तौर पर कह लीजिए, हर सीज़न में ज़रूरत के मुताबिक सब चीज़ें पैदा होती हैं। अब जैसे आजकल खीरा, तरबूज, ककड़ी, ये सब चीज़ें हैं बदन को तर रखने के लिए। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ मतलब है कि ये सब चीज़ें नहीं दस्तियाब होती, जैसे आम मान लीजिए है, आम बहुत बड़ी नेमत इस वक्त है
1: जी
0: कि किसी गर्मी लग गई, लू लग गया हो, पेट में कोई ख़राबी आ गई है, तो वो आम का पन्ना इस्तेमाल करें, आम को उबाला कैरी को,
1: जी
0: और उबालने के बाद उसके गूदे को जो है पानी और चीनी नमक मिला करके इस्तेमाल कर सकता है इंसान। और जो लोग शुगर पेशेंट हैं वो चीनी मत मिलाएं, हल्का नमक मिला लिया करें।
1: तो उनके लिए जो शुगर पेशेंट है, आम का ऑल्टरनेटिव भी कुछ और है?
0: हाँ, जाहिर है कि उनके लिए तो यही चीज़ है, लेकिन इसमें चीनी मत मिलाएं, वो थोड़ा टेस्ट से परहेज रखें, नारियल पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कुदरत ने हमें हर सीज़न के लिहाज से चीज़ें दी हुई हैं, और उसी का हम इस्तेमाल पहले करें ताकि हम दवा से बच सकें।
1: एहतियात बरतने के बाद भी अगर किसी को अपच, गैस या एसिडिटी की समस्या आती है तो उसके लिए यूनानी उपचार कैसे किया जाता है? डॉक्टर सूफिया से हम जानना चाहेंगे।
2: पहली बात तो हमें अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए गर्मियों में, जैसा कि हमें बहुत ज़्यादा ऑयल, बहुत ज़्यादा मसाले, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमारे यूनानी में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छा हम असर करती हैं। जैसे पुदीने का एक पेस्ट आता है, जवारिश पुदीना जैसे बोलते हैं, जवारिश तमर हिंदी आती है, वो सब ठंडी दवाइयाँ जो पेट को बहुत अच्छा वो करती हैं। शरबत में जैसे गुड़हल का शरबत है, शरबत बेलगिरी बहुत अच्छी है, आप दो दो चम्मच सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं, शरबत की तरह पी सकते हैं उसको, और शरबत अनार भी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्ट करती हैं। बस ये है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए गर्मियों में कि गर्मी की वजह से जो जो चीज़ें हमें ज़्यादा हार्म कर रही हैं, बहुत मिर्च है, मसाला है, बाहर की बहुत सारी चीज़ें, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। आजकल पता नहीं कैसे क्या किस तरीके से लोग बनाते हैं, कितने वक्त रखते हैं, फ्रोज़न फूड अवॉइड करना चाहिए। मेरे समझ से इन चीज़ों के लिए हमारी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है।
1: तो जो जो आपने शरबत बताई, क्या इनमें से कुछ ऐसा है जो हम रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं?
2: शरबत बेलगिरी है, शरबत अनार है, ये बराबर आप ले सकते
1: तो ये
2: हैं।
1: सभी लोग ले सकते हैं या शुगर पेशेंट्स या बच्चों के
2: शुगर
1: लिए
2: शुगर
1: कुछ
2: फ्री तो
1: नहीं?
2: इसमें
1: कोई नहीं,
2: शायद नहीं है, अभी बच्चे ले सकते हैं, जो जिसको शुगर है वो थोड़ा अवॉइड करे। वो कुछ और चीज़ें से पुदीना है, लेमन है, नमक है, जीरा भुना हुआ डाल के कुछ एक ड्रिंक बना ले, वो ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा उसको कोल्ड करके लिया जा सकता है। गुनगुतीरा का भी बहुत अच्छा इस वक्त इफेक्ट आ रहा है। तुक मलंगा का भी बहुत अच्छा है, उसको भी मिक्स करते हैं, भिगो के 4-6 घंटे, उसके बाद उसको आप पानी में मिक्स करके उसको, उसमें पुदीना है, थोड़ा सा लेमन है, ये डाल के आप इस्तेमाल करते हैं। शुगर के पेशेंट जो हैं वो नमक का यूज़ कर रहे हैं, काला नमक का यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में ले सकते हैं उसको, है ना।
1: गर्मी के मौसम में पुदीना, नींबू सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो लेने में और भी आनंदमय
2: जी जी
1: रहेगा।
2: जी जी जी बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर सैयद आपसे जानना चाहेंगे कि अगर फिर भी, अगर कोई, जैसे आपने बार बार कहा कि जंक फूड ना लेकर फिर भी किसी को ने अगर खा लिया और उसको फूड पॉइजनिंग हो गया या कुछ
0: जी
1: उसकी
0: जी
1: तबीयत खराब हो गई, तो उनके लिए यूनानी चिकित्सा क्या सलाह देगा? क्योंकि
0: उनके
1: आजकल मौसम
0: लिए
1: ऐसे ट्रैवल भी कर रहे हैं लोग।
0: बिल्कुल सही है। अव्वल तो हमने बताया कि घरेलू तौर पर जो हम अपने साथ रख सकते हैं, जो चीज़ें ख़राब ना हों, उसमें ख़ास तौर से चने और जौ का सत्तू जो है वो नंबर एक पर है। दूसरी चीज़ ये है, अगर हो ही गया है, तकलीफ़ आ गई, तो एक तो हमने बताया अरक अजीब का इस्तेमाल है, 2 बूंद अरक जो है आधे कप पानी, 1 कप पानी में लेकर के पी लिया, उससे फौरी तौर पर उसकी वोमिटिंग रुक जाएगी। इसके अलावा यह है कि डिहाइड्रेशन अगर वाकई हो ही गया है, उसे चाहिए कि अपने करीब के किसी हॉस्पिटल से रुजू करें वो, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि डायरिया, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है,

0: उसको रिहाइड्रेट करने के लिए वो आदमी जो है डिहाइड्रेशन बचे उस पर हम खास ध्यान देते हैं। और ये जो ORS वगैरह का बताया गया है धीरे धीरे करके सिप करके पिए, एक बैग बहुत ज़्यादा नहीं पानी इस्तेमाल करें, या जो कोई भी शरबत हो तो उसका इस्तेमाल धीरे धीरे किया जाए, तो वो जो है डाइजेस्ट होकर के फिर हमें जो कमी पानी की है वो पूरी होती रहेगी। तो ये असल में ज़रूरी है कि उपचार तो उपचार है, इलाज में जल्दबाजी नहीं, और उसमें उसी तरीके से काम किया जाएगा जैसा कि जो ज़रूरत पेश आई। अब किसी को डायरिया और वोमिटिंग दोनों है तो उसमें पहले मरहले में एक तो अरकजीत दे दिया, फिर जवारिश पुदीना आता है, जवारिश पुदीना विलायती कहलाता है, तो उसको इस्तेमाल कराएंगे। ऊपर से फिर हम ये शरबत जो है आपका अनारायण कहा है, शरबत अनार के नाम जाना जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाए। फिर इसके अलावा जो है हब्बे पेच के नाम दवा आती है हमारी, जो यूनानी दवाएं हैं, तो उसमें एक गोली दे दिया या हब्बे सुमाक दे दिया, इस तरह कोई चीज़ आती है दवाएं हमारी यूनानी की, जो क्लासिकल मेडिसिंस हैं, जनरल मेडिसिंस कहलाती हैं, ये हर जगह मिल जाती है आराम से, तो इसका भी हम उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये है कि देखना ज़रूरी होता है कि पेशेंट जो है किस कंडीशन में है इस वक्त, क्या कैफियत उसकी है, उसको फौरन हम हॉस्पिटलाइज करें या फिर घर पर ही उसका इलाज करें, तो उसकी कैफियत देखने पता लगे कंडीशन क्या उसकी है। और ये बहुत बड़ी समझदारी होती है आदमी को कि बर वक्त जो है उसका इलाज किया जाए और कहाँ किया जाना बेहतर है। किसी को मान लीजिए बहुत तेज़ धूप लग गई, सन स्ट्रोक हो गया, लू लग गई, तो ठीक, घर पर जो हमारे उपचार मौजूद है वो तो हमने दे दिया, और उसमें आज के सीज़न में ये जो पना आम का जो बताया कि कैरी को उबाल करके उसका गुदा निकाल करके चीनी पानी का घोल बना करके पिला रहे हैं उसे, ORS की सूरत में भी हम दे सकते हैं, ये सब बातें हैं खैर। लेकिन अगर हम महसूस करते हैं कि इसको और ज़्यादा अच्छा उपचार चाहिए तो हम उसको हॉस्पिटल में रेफ़र कर दें, ये भी एक इलाज का बड़ा हिस्सा है और बड़ी समझदारी की बात होती है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
0: जी
2: जी पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। दोनों
1: जी नमस्कार, बताइए आपका क्या प्रश्न है।
2: डॉक्टर साहिबान को मेरा सलाम पहुँचे।
1: जी,
0: शुक्रिया साहब, बहुत बहुत।
2: हमारे यहाँ यूनानी में अर्क चिकित्सा का बड़ा महत्व है।
0: जी जी
2: मैंने सुना
0: बिल्कुल
2: है कि
0: सही।
2: अर्क मकोए, बहुत सारे अर्क जो हैं वो बहुत कारगर हैं, तो कृपया अर्क के बारे में बड़े तफसील से बताइए। थैंक यू।
0: देखिए अरक जो है ये आम तौर से हम उस वक्त देते हैं जब महसूस हो कि जिगर में सूजन है या जिगर बढ़ गया है, तो उस सूरत में जो अरक मको है, अरक कासनी है, अरक ब्रंजासफ है, इसको हम इस्तेमाल कराते हैं। और अगर ये लगता है कि गैस वैस ज़्यादा बन रही है तो उसमें अरक अजवाइन को बढ़ा देते हैं, और
3: फैटी लीवर में भी देते
0: जी
3: हैं।
0: जी तो ऐसे कैफियत में जो है, बहरहाल ये जानना ज़रूरी है कि अरक का इस्तेमाल कौन कौन से एक साथ किए जाएं। तो ये जो तीन अरक हमने बताए हैं शुरू में, ये तमाम सारे फैटी लिवर हो या लिवर एनलार्ज हो या और कोई कैफियत है तो, या सूजन आंतों में हो बड़ी में, तब भी देते हैं हम इसे। तो चूंकि इसका असली काम जो है स्वेलिंग को कम करना है और फैट को डिजॉल्व करना भी है, इसीलिए फैटी लीवर में बहुत अच्छा इफेक्ट इसका होता है। तो ख़ास तौर से अगर एक साथ हम चार अरक इस्तेमाल करें, कासनी, अर्क मको, अर्क बादियान और अर्क ब्रंजासर, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, जल्दी आएगा। इसको कम से कम यह है 15 ml ईच सभी को जो है, चूंकि तफसीर से जानना चाह रहे हैं वो कि हम अरकियात के बारे में, जो अरक का महत्व तो बहुत ज़्यादा उन्होंने पूछा, बताया, समझा भी है, और जाहिर है कि ये अच्छा नॉलेज रखते हैं इस सिलसिले में, बड़ी अच्छी बात है। तो इनमें जो है एक कप में हम सभी में से 15 15 ml जो है, मैं यानी चार चार ढक्कन कह लीजिए, जो बोतल का ढक्कन होता है वो भी एक पैमाना है उसका नापने का, तो उसे चार चार करके एक कप में रख लिया और एक साथ

0: मिलाकर पी लिया। अगर अरक को हम खाली पेट पिएं अजवाइन के अलावा तो बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा। ज़ीरे का अरक भी होता है, ज़ीरे का अरक हम देते हैं सुबह नाश्ता के पहले सफ़ूफ मुहज़्ज़िल के साथ, जिसका पेट बढ़ा हुआ हो, फैट ज़्यादा हो, उसे कम करने के लिए बहुत कारगर दवा है ये, और ये बहुत ही मशहूर कैलेस्कर मेडिसिन है ये। तो हर जो अरक हैं, अरक नाना जैसा जिक्र किया हमने, अब आजकल सीज़न में गर्मी है, इसमें हम अरक नाना मतलब कहते हैं पुदीना का अरक, यानी पानी एक तरह का। तो उसे जो है, जब हम कशीद करके बोतल में रखते हैं तो उसे अरक बोलते हैं। अरक का मतलब ये है कि उसकी पूरी जो है रूह को कशीद कर दिया, वो सब चीज़ें उसमें आ गई, और उसकी वजह से वो डाइजेस्टिव होता है, बहुत नहीं एब्जॉर्बल होता है। बॉडी के अंदर कोई चीज़ हम खा रहे हैं, खाना कमाल नहीं है, उसे कहते हैं पचाना कमाल। पचाने से मतलब यही होता है वो चीज़ जो है एब्जॉर्ब हो रही नहीं हो रही है। तो ये बड़ा अहम मामला होता है, तो इसको समझना चाहिए। तो जो भी अरक इस्तेमाल करें उसमें ये जानना चाहिए कौन सा किसके लिए है और कब लिया जाए।
1: एक मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, डॉक्टर नमस्कार, मैं मेरठ से संजय बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे पित्त की थैली निकल चुकी है और जब से मुझे एसिड और गैस बहुत बनती है, और अब तो एक काम और हो रहा है, अगर मैं ठंडा या बासी खाने से पेट फूल जाता है और टाइट हो जाता है, और टमाटर और अचार खाने से पेट में दर्द होने लगता है, और नहीं खाता हूँ तो ठीक रहता है, डाइजेशन में दिक्कत हो रही है, क्या करूँ?
0: हाँ, असल में जो इन्होंने बताया कि गाल रिमूव हो जाने की सूरत में जो लीवर का जूस हमें चाहिए, बाइल जूस जिसे कहते हैं, उसके ज़्यादा ज़रूरत भर ना मिलने की वजह से ये होता है कि जो एसिड है ना वो बेस में तब्दील नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, किसी को हार्ट बर्न की शिकायत हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो एसिड बेस का बैलेंस जब नहीं रहेगा बदन में तो फिर ये दिक्कत पैदा होती है। इसमें जो दवा इनको इस्तेमाल करनी है बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, हर जगह मिल जाएगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इससे पूरी तरह से फ़ायदे में रहेंगे। वो ये है माजून दबीदुल वर्द, माजून दबीदुल वर्द। तो दबीदुल वर्द जो है ये 5 ग्राम, और ऊपर से जो है अर्क कासनी अर्क मको 15-15 ml, ये खाली पेट सुबह नाश्ता के पहले शाम खाने से पहले इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा ये है कि शाम को सोते समय इन्हें चाहिए कि उस वक्त जवारी शाही 1 चमचा शाम यानी डिनर के बाद ले लिया करें। ये तो बिफोर है माजून और अरक, और इसको लेना हमें आफ्टर
1: डिनर।
0: डिनर, तो ठीक रहेगा इनको।
1: एक कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे श्रोता। हेलो,
2: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप
2: और
1: कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, दोनों को।
0: हाँ भाई, बहुत शुक्रिया
3: नमस्कार,
0: आपका,
3: नमस्कार।
0: थैंक यू।
2: डॉक्टर साहब, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, गाँव
0: जी जी जी
2: करनाल है जी।
0: जी
1: जी बताइए।
2: अच्छा सर, मेरा भाई है छोटा मेरे से, उसकी 42 साल उम्र है, और उसको जो है ना भूख नहीं लगती, और वो 2009 से यानी 17 साल से मेंटल इलनेस की दवाई खाता है सर, और रोटी बिल्कुल नहीं खाता, ठीक तरह से नहीं खाता, मतलब थोड़ी बहुत ही खाता है जी। तो क्या किया जाए उसको, और मेरी प्रॉब्लम, मैं अब अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ सर।
0: ठीक है भाई, के लिए जो है आप जो है जवारिश तमर हिंदी ले लीजिए, जवारिश तमर हिंदी, तमर TMAR, तमर यानी ता मारा, जवारिश तमर हिंदी, ये आधा आधा चमचा सुबह शाम खाली पेट उनको दीजिए, और खाने के बाद उनको हब्बे कबीर नौशादरी दीजिएगा, दो दो गोलियां। आवाज़ शायद इनकी अब
1: आवाज
0: डिस्कनेक्ट हो गई है, बहरहाल वो भाई को उनके हमने बता दिया, वो दवाओं की जो खुश्की होती है, जो अंग्रेज़ी दवा हम खाते हैं आमतौर से, उसकी खुश्की ज़्यादा पैदा हो जाती है, उसकी वजह से दिक्कतें पैदा होती हैं। खैर, तो ये दवा जो है जो हमने उनको बताया तो उससे उनको राहत मिलेगी।
1: आज रेडियो डॉक्टर में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि समर डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिंस पर, हम आपसे ये भी जानेंगे कि कुछ ऐसे नुस्खे हैं क्या जिन्हें लोग आसानी से अपना सकते हैं जिससे सभी की समस्याओं का समाधान हो जाए।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं समर्स डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिन पर। इस पर अभी हम जानेंगे कि यूनानी मेडिसिन में ऐसे कौन से नुस्खे हैं जिसे हम आसानी से अपना सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक श्रोता है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: सलामुअलैकुम।
3: जी वालेकुम सलाम।
2: हाँ जी, कस्बा किठौर जिला मेरठ से बोल रहे हैं जी, सलाउद्दीन।
3: शुक्रिया साहब, फरमाएं।
2: सर मेरे अभी करीब एक साल हुआ तो मेरे वो निकल आई थी हर्फीस।
3: जी जी।
2: तो मैंने ये आपके जो यूनानी से ही दवा खाई, अल्लाह का शुक्र है उससे बहुत फायदा हुआ मुझे, एक साल हो गया।
3: जी जी।
2: तो ये दाने दाने से थे, तो इसमें हमारे लिए उन्होंने एक तो मरहम लिखा था। मरहम है सफेद काफूरी।
3: जी जी बिल्कुल ठीक।
2: और एक इसमें था हमारा ये शरबत उन्नाब।
3: जी।
2: और एक थी इसमें माजून दवद दबुल दर्द।
3: माजून दबीदुल वर्द था, ठीक है।
2: जी हाँ, ये तीन चीजें थी सर। तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, अब जैसे ये गर्मी पड़ी है मुझे, इसमें खुजली सी दोबारा लगने लगी है, क्यों फिर ये दोबारा यही दवाई खाई?
3: नहीं, अब आप माजून उशबा ले लीजिए।
2: माजून
3: उशबा
2: मुशबा। अच्छा
3: उशबा,
2: अच्छा।
3: ऊ बड़ा शाह और बा उशबा।
2: हाँ मुशबा। अच्छा
3: माजून उशबा हो जाएगा, और साथ में जो है शरबत उन्नाब लेते रहिएगा।
2: जी जी जी।
3: और अगर कहीं आपको
2: जी
3: नीम के फूल मिल जाए, फूल
2: नीम के,
3: हाँ, या नीम का तेल मिल जाए
2: जी जी,
3: तो ज़्यादा अच्छा है। नीम के तेल इस्तेमाल कीजिए, आसानी से मिल जाता है।
2: अच्छा हाँ, क्योंकि मैं अभी वहाँ गाजियाबाद गया था, वहाँ यूनानी बहुत अच्छा अस्पताल है, वहीं से ही दवा चली थी मेरी।
3: जी जी बिल्कुल ठीक है। गाजियाबाद में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन,
2: जी जी हाँ हाँ
3: तो वो है, बहुत अच्छा है। वहाँ से आपने सही जगह आप गए, और जाहिर है कि ये भारत सरकार का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यूनानी का।
2: जी मैं हाँ उसी से ही मुझे बताया था उस टाइम में किसी ने कि भी वहाँ चले जाओ।
3: नहीं, ये नहीं, अच्छा किया। और अब फिलहाल आप नहीं ले लो, काफ़ी रहेगा।
2: ठीक है जी, शुक्रिया जी। और आप आते हैं जी डॉक्टर के उसमें, यहाँ प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा लगता है सभी को जानकारी।
3: जी, इसमें आकाशवाणी का बेहद शुक्रिया।
2: हाँ जी, जितने भी हमारे साथी सुन रहे हो भाई, हम उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक मैसेज भी हमारे पास, वो लिखते हैं दोनों डॉक्टरों और एंकर मैम को गुड आफ्टरनून। वो पूछते हैं कि यूनानी चिकित्सा में मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए क्या खान पान व कौन सी दवाएं ले सकते हैं, कृपया बताने की कृपा करें। नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
3: जी, काफ़ी अच्छा सवाल इन्होंने किया। हालांकि आज का प्रोग्राम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर है, लेकिन जाहिर है कि इससे रिलेटेड भी है, तो खाने पीने में ख्याल रखें, समय से खाएं और नींद पूरी लें। इसके लिए एक खमीरा आता है, खमीरा गाओ जबान

0: अंबरी जद्वार उदय सलीब वाला। एक बार और बोल देता हूँ, लिख लीजिए। खमीरा गाँव जबान अंबरी जद्वार उदय सलीब वाला। ये रोज़ाना 5 ग्राम सोते वक्त इस्तेमाल करें और सुबह सवेरे जो है दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाले आधा चमचा, इसका इस्तेमाल लगातार कम से कम 6 महीना कीजिए। इससे काफ़ी आपको सुकून मिलेगा और दिमागी तवाज़ुन भी अच्छा बनेगा। और यह है कि खाने पीने में ख्याल रखें, कब्ज़ ना होने पाए और गैस कम बने। आप जो कुछ हम खाते पीते हैं हमें अंदाज़ा हो जाता है एक उम्र के साथ कि हमें क्या चीज़ नुकसान कर रही है, क्या फ़ायदा कर रही है। उसी लिहाज से अपना खाना पीने का चयन करें तो अच्छा रहेगा।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एंड बर्निंग मेच्यूरेशन के लिए यूनानी चिकित्सा बताएं, अनिल गुरुग्राम से।
0: जी, इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये शुगर पेशेंट हैं या बहरहाल अगर शुगर पेशेंट हैं तो उनके लिए शरबत बजूरी SF के नाम से आजकल आ रही हैं, कुछ कंपनीज बना रही हैं जो शुगर फ्री है। लेकिन जो शुगर फ्री, जिनको शुगर नहीं है उनके लिए अच्छी बात यह है कि वो शरबत बजूरी मोतदिल, ये क्लासिकल मेडिसिन यूनानी की हर जगह मिल जाएगी। दो दो चमचा सुबह शाम नाश्ते के बाद, शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है माजून दबिदुल वर्द, ये सुबह शाम लंच और डिनर से पहले 5 ग्राम, और बिफोर ब्रेकफास्ट जो है माजून फलासफा 1 चमचा इस्तेमाल करें। तो इससे कुछ दिनों के बाद उनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता यह है कि माजून दबिदुल वर्द के साथ साथ जो है वो अरक कासनी, अरके मको और अरके ब्रंजा सब भी इस्तेमाल करें।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं डॉक्टर साहब नमस्ते, हमें गैस बहुत बनती है और पेट गुड़गुड़ करता है, क्या करें? प्रयागराज उत्तर प्रदेश से।
2: पहली बात तो ये देखिए कि आप खाने पीने में कैसे खा पी रहे हैं, उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम ये हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें खा रही हैं जिससे गैस ज़्यादा आपको बन रही है, उसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एक तो हब्बे कबित, सुबह शाम दो दो टैबलेट ले सकते हैं, गोली ले सकते हैं आप। और जवारिश में आप जवारिश शाही ले सकते हैं आधी आधी चम्मच सुबह शाम। और एक टेबलेट और ऐड कर सकते हैं हब्बे हल्दी, जो कि हींग की गोली होती है, दो दो टेबलेट सुबह शाम आप ले सकते हैं। और पानी का ध्यान रखें, सोने का ध्यान रखें, खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं नमस्ते गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब एंड एफएम रेनबो टीम को, मैं नीता अमरावती से। ये लिखते हैं, मैं एफएम रेनबो के प्रोग्राम सुनती रहती हूँ और हेलो डॉक्टर प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सभी परेशानियों का इलाज हो सकता है और सेहत के बारे में जानकारी भी मिलती है। तो ये कहते हैं कि इनको है ना अलग अलग भाषा का, मतलब अलग अलग स्टेट्स का खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई है, लेकिन कभी कभी ने डर भी लगता है कि सुबह का खाना शाम को खाती हैं तो कभी कोई बीमार ना पड़ जाए। तो क्या ऐसे में हम क्या करें कि जिससे बीमार ना पड़े और सही रहें?
0: जी, काफ़ी अच्छा सवाल है इनका। और जाहिर है कि अगर उनका पेट ठीक है तो बहुत सी बीमारियों से खुद ब खुद बच सकते हैं वो। इन्होंने जैसा कि काफ़ी सैलानी टाइप का सवाल किया इन्होंने, तमाम सारे स्टेट्स के अलग अलग फूड्स हैं, तो अच्छी बात है, इनको तजुर्बा भी अच्छा है। लेकिन यही ख्याल करें कि हर इलाके का जो भी, वो कहते हैं ना कि एक रवायती खाना जिसे कहते हैं, जैसे बिहार में चले गए आप तो वहाँ के लिट्टी चोखा बहुत मशहूर है, तो यकीनन वो बड़े काम का होता है और लोग खाएं तो उससे कोई नुकसान नहीं है। हमारे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा वगैरह बहुत मशहूर है, ये मज़बूत खाना भी है। उसमें यह है कि घी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कई बार लोग, घी का इस्तेमाल कम किया जाए। और रहा सवाल ये कि दिल्ली तो यानी समझिए कि भारत की राजधानी है, तो यहाँ तो हर तरह का खाना मिलता है, तो उन जगहों पर खाना खाया जाए। अगर कोई आदमी टूर पर निकला हुआ है तो सोचे कि मुझे कहाँ खाना चाहिए, तो वो ख्याल रखें कि जिस जगह होटल पर भीड़ ज़्यादा हो तो उन होटलों पर खाएं तो अच्छा रहेगा। उसकी वजह क्या है, वहाँ आम तौर से महसूस कर लिया जाएगा कि ज़्यादा
1: लोग खा चुके
0: खा
1: हैं, खा
0: चुके
1: रहे
0: हैं
1: हैं।
0: और खा रहे हैं, ताज़ा हो रहा होगा, ज़रूर खाना ताज़ा मिलेगा।

0: ये तो आपने हमें बताया कि जनरल में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो डॉक्टर सूफी आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के बचाव के लिए यूनानी उपचार कैसे करें। सबसे पहले तो बच्चों के लिए बताइए कि बच्चे क्योंकि दिन भर काम करते हैं, स्कूल में पढ़ाई भी करते हैं, बाहर गर्मी में खेलते भी हैं, तो उनके बचाव के लिए क्या करें।
1: उनको जब भी देखें कि ज़्यादा बाहर से खेल के आए हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा उनको थकान है कुछ है, तो कुछ घर में ऐसा ड्रिंक बना लें जैसे शुगर है, नमक है, लेमन है, ये चीज़ें बना के उनको ये दें। और इसके अलावा हमारे पास से शरबत होता है, शरबत अनार है, आंवला है, आंवला है, शरबत आंवला एंड शरबत अनार ये दे सकते हैं। और एक ड्रिंक बना के रखें जैसे जिसको ORS की ही उसको एक शक्ल कही जाएगी, जिसमें कि लेमन है एंड नमक एंड शुगर मिला के थोड़ा सा ज़ीरा भुना हुआ डाल दें, उसको दे सकते हैं, पिला सकते हैं उसको पानी में डाल के। आंवले का शरबत बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा इस वक्त, उसको भी दें। और इसका भी बहुत, अगर उसको कभी ऐसा लगे कि हाँ लूज मोशन या कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है पेट की, तो शरबत बेलगिरी भी ऐड कर सकते हैं, दो दो चम्मच। सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर बेहतरीन रहेंगी। रही बात प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में वैसे भी मेडिसिन थोड़ा अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो वही वही चीज़ जो हमारे पास जवारिशे तमर हिंदी बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, और हींग की गोली आती है जिसको हल्दी बोलते हैं, है ना, उसको दो दो गोलियां दे सकते हैं। उसके लिए बेहतर होगा पानी वक्त पे पिए और शरबत आंवला और शरबत अनार ये सब चीज़ें लेती रहे, इससे बहुत बेहतर
0: और
1: बेहतरीन रहेगा।
0: बुज़ुर्गों के लिए क्योंकि कई बार तो एकदम सर्दी होती है, कई बार एकदम गर्मी होती है, तो बदलते मौसम में कई बार बीमार पड़ जाते हैं, तो बुज़ुर्ग क्या करें।
1: बुज़ुर्गों के लिए तो भी यही सारी चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें हमें लीवर की मेडिसिन थोड़ा ऐड करके रखना चाहिए बुज़ुर्गों के लिए। माजून दबी दीवर देना चाहिए उनको, जवारिशे पुदीना विलायती देना चाहिए, एंड यही जैसे गोंद कतीरा है, चिया सीड इन सब चीज़ों का वो थोड़ा सा शरबत बना के वो लेते रहें, पीते रहें। गुड़ का भी यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, गुड़ भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है इन सारे शरबतों में। शक्कर ना यूज़ करके, शुगर ना यूज़ करके गुड़ का ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना जी।
0: एक मैसेज भी हमारे पास, वो लिखते हैं, सर मुझे गर्मियों में लूज मोशन की शिकायत रहती है 15 दिन में, तो सर यूनानी चिकित्सा में कोई इसका इलाज है।
2: जी काफ़ी अच्छा सवाल इन्होंने किया है। एक तो यही है कि जवारिश अनारायण का इस्तेमाल ये सुबह नाश्ता के पहले आधा चमचा सादे पानी से कर लें, ये काफ़ी बेहतर रहेगा। और चूंकि गर्मियों में ख़ास तौर से उनको शिकायत रहती है तो खाने का ख़ास ख्याल रखें, उसमें बाहर की तली हुई चीज़ें जो आजकल फैशन में मोमोज वगैरह तमाम सारी चीज़ें हैं, जंक फूड्स वगैरह, उसका इस्तेमाल कम करें। और जो सीज़न में कुदरत ने हमें दिया है, आम का इस्तेमाल है, केला है, पपीता है, अनार है, ये सब इस्तेमाल करें, अनन्नास है, इसमें जो उनको मिल जाए आसानी से कोई एक फल ज़रूर लिया करें, क्योंकि ये जो मौसमी फल है ना, कुछ तो सदाबहार फल है, जैसे अनार है हमेशा मिलता रहता है, पपीता हमेशा मिलता रहता है, अनन्नास है ये भी आमतौर से मिलता रहता है, ये सब डाइजेस्टिव भी हैं और काबिज़ भी हैं, तो उनको जो लूज मोशन शिकायत दूर हो जाएगी इससे। इसके अलावा यह है कि वो एक गोली रात को सोते वक्त हब्बे सुमाक, सु मापरा का और का सुमाक, एक गोली रात को सोते समय ले लिया करें, ये बहुत काफ़ी उनके लिए रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर सूफिया हुसैन ने बहुत सारे मशरूबात का जिक्र किया है, शरबत आमला है, शरबत अनार है, सब इस्तेमाल करें बहुत फ़ायदा रहेगा। शरबत बेलगिरी है, ये काफ़ी हमारे यहाँ चलन में है, लोग यूज़ करते हैं, बेल का मुरब्बा भी लोग इस्तेमाल करते हैं सुबह नाश्ते के बाद, थोड़ा सा ले लिया ज़्यादा लेकिन ना लें, ये ख्याल रहे, चूँकि इन सब का मिजाज ठंडा होता है, तो ज़्यादा ले लेने में ये नुकसान होगा कि हमें बदन में दर्द भी हो जाएगा और जॉइंट वालों को ख़ास तकलीफ़ पड़ जाएगी, तो इसीलिए डॉक्टर के मशवरे से ही दवा ली जाए। कितना लेना है ये ज़रूरी है जानना, 10 ग्राम ज़्यादा ना होने पाए।
0: सही मात्रा में लेना भी आवश्यक है।
2: जी जी
0: जी एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, हाय हेयर डॉक्टर रिंकू मैटरनिटी होम मुनिरिका, याददाश्त बढ़ाने के लिए यूनानी मेडिसिन में दवाई है सर तो बताएं।
2: बहुत अच्छी दवा यूनानी में है। एक तो खमीरा गावजवान अम्बरी जवाहर वाला, ये सुबह सवेरे रोजाना इस्तेमाल करें वो, और अगर ये महंगा लगे तो इसका खमीरा गावजवान

0: सादा भी आता है, तो सुबह नाश्ते से पहले एक चमचा इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें एक अदद अखरोट का इस्तेमाल करें। ये एक अखरोट रोज़ाना यूज़ करना, एक से ज़्यादा नहीं। या 5 बादाम रात को भिगो दिया, सुबह छील करके उसका छिलका निकाला, फिर उसको इस्तेमाल किया। लेकिन इन सबको खाने के लिए थोड़ा सा वक्त दें, अच्छे तरह से चबाएं, क्योंकि अब ये मौका तो लोगों के पास है नहीं कि सील पर घिस करके इस्तेमाल करें।
1: जी
0: हालांकि बादाम घिस कर पहले इस्तेमाल किया जाता रहा, बड़ी फुर्सत रहा करती थी, तो चलिए कम से कम, अगर इतना मौका नहीं है तो देर तक उसे चबाएं। तो ये दो चीज़ का इस्तेमाल करें तो इनकी याददाश्त अच्छी रहेगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्लासिकल मेडिसिन यूनानी में मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत आम दवा है जो हर जगह मिल जाएगी, दवा भी और ड्राई फ्रूट भी।
1: ये तो आपने बताया कि क्या हम ले, एक मैसेज हमारे पास आया, वो लिखते हैं, डॉक्टर साहब मेरा सवाल है कि आप मुझे वेट कम करने के लिए कुछ बताएं, पेट बहुत भार हो गया है। आसिफ सैफी फ्रॉम मेरठ।
0: ओ, एक तो यह है कि इन्हें जो नॉनवेज है उसका इस्तेमाल कम करना है। इसी के साथ जो है, कटहल, गोभी, बैंगन, अरवी, राजमा, उड़द, पूड़ी पराठे, इसका इस्तेमाल भी कम करना है, जितना कम हो अच्छा है। दूसरे, सफूफ मुहज़्ज़िल और अर्क ज़ीरा, ये सुबह सवेरे नाश्ता से पहले जब भी नाश्ता करने बैठें पहले इसको इस्तेमाल करें। एक चमचा सफूफ मुहज़्ज़िल और ऊपर से 4 चम्मच, बड़ा 4 चम्मच ज़ीरे का पानी, वो इस्तेमाल कर लिया करें। इसके अलावा यह है कि ये खाने में सुबह शाम खाना खाने के बाद जो है, हब्बे कबीर नौशादरी 2 गोली इस्तेमाल कर लिया करें, इससे उम्मीद है। और सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें,
1: जी
0: सलाद या मौसम का कोई फ्रूट, जो फ्रूट इनको अच्छा लगे वो खा लिया करें।
1: लेकिन जैसे कि कई लोग होते हैं कि डायबिटिक हैं और साथ में उनको अल्सर की भी प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर सूफी आपसे जानना चाहेंगे तो वो क्या करें, क्या लें, अगर डायबिटिक भी है और अल्सर भी है, क्योंकि उसमें वॉमिटिंग और लूज मोशन की भी कई बार शिकायत आ जाती है साथ में।
2: उसमें आप, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है अल्सरेशन के लिए। एक तो अगर आपको माउथ में हुआ है, अगर माउथ में हुआ है तो हमारे यहाँ ज़रूरी कुला करके एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, वो ले सकते हैं। अर्कियात भी ले सकते हैं इसमें, अर्क मको और अर्क बादियान, अर्क कासनी, वो ले सकते हैं, उससे किसी बहुत अच्छा
1: और
2: अर्क
1: अगर
2: इफेक्ट।
1: पेट में अल्सर है डायबिटिक के साथ,
2: उसमें भी अर्कियात का असर, अर्कियात का ही इस्तेमाल करेंगे हम ज़्यादातर, क्योंकि उसमें हम मीठी, ये दवाइयाँ हमारी मीठी होती हैं इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, या तो टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में देते हैं, या फिर जो है अगर उसको नहीं है शुगर तो फिर तो उसे मीठी ही दवा दी जाएगी। इसमें कैप्सूल वगैरह भी दे सकते हैं हम, जिगरीन हमारे पास बहुत अच्छी आती है ना, और बाकी अब हबे कभी दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, और बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जिसको हम शरबत के भी उसमें दे सकते हैं शक्ल में। अगर शुगर है तो फिर सिर्फ अर्कियात पे डालेंगे एंड टेबलेट पे डालेंगे, और अगर शुगर नहीं है तो मैं उसमें माजून जवारिश भी ऐड कर सकती हूँ, है ना। माजून दबीदुलवर्द का बहुत अच्छा इफेक्ट है, उसको ज़रूर देना चाहिए। इसलिए अर्क के साथ अर्क अजीब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जी
1: तो कई बार होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, किसी को भूख लग रही होती है, किसी को नहीं लग रही होती है, और किसी को डाइजेशन नहीं हो रही होती है, तो उन तीनों केसेस में क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए यूनानी चिकित्सा क्या है?
0: हाँ, यूनानी में असल में अगर वाकई भूख नहीं लग रही है तो हम उसका काज देखते हैं कि क्यों नहीं लग रही है। लीवर में गड़बड़ी है या उसके आंतों में गड़बड़ी है, पेट में कोई ख़राबी है, एसिडिटी ज़्यादा है वगैरह। इसमें हमारे यहाँ जैसा कि बताया, जवारिश तमर हिंदी के साथ एक गोली आती है, हब्बे कुरस तुरशे मुश्तही, तुरशे मुश्तही कहते हैं उसे, मुश्तही मतलब इश्तहा यानी भूख लगाना, वो गोली होती है, खाना खाने के बाद दो दो गोली देते हैं उसको। इसके अलावा हम मेन काज पर जाते हैं, ये देखते हैं उसको असल वजह क्या है भूख ना लगना, तो वो भी दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये दवा जो है, जैसे कि दवाएं वो दी जाती हैं कि फौरी तौर पर उसके लिए काम आए, जैसे बुखार है किसी को, थबे बुखार दे दिया पहले कि भाई बुखार उसका

भले थोड़ा आराम मिले, क्यों हुआ वो बात की चीज़ है, वो देखा जाएगा। तो ऐसे ही है, भूख ना लगना ये एक बीमारी है, एनोरेक्सिया। सीधी सी बात है कि उसका हमें काज देखना पड़ेगा कि वजह क्या है। जिगर कमज़ोर में आमतौर से ऐसा होता है, और कई मरतबा ऐसा होता है कि जो है वो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं उसका सिक्रेशन कम होता है, तो देखना ज़रूरी होता है। हमारा खाने की जो सोचना ही चाहिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा वो मुँह से शुरू हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, तो उससे सलाइवा लार सराल या लार जो भी बोलते हों लोग अपने ज़बान में, इलाके वाइज मशहूर है। तो जब हम, इसीलिए कहा गया खाना चबा चबा के खाओ, तो जो कुछ हम खाएंगे तो देर तक चबाएंगे, तो चबाने में वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ना वो अपना पूरा काम करेंगे, सिक्रेशन भी अच्छा होगा और वो लपेट भी देगा उससे, तो वो आधा सिस्टम शुरू हो गया, यहीं से आधा डाइजेस्ट होगा सह लीजिए, फिर वो जाएगा नीचे मैदे के अंदर स्टमक में, स्टमक में जो जाते ही जो है जो

0: तक चबाएंगे, तो चबाने में वो जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, वो अपना पूरा काम करेंगे, सिक्रेशन भी अच्छा होगा और वो लपेट भी देगा उससे। तो वो आधा सिस्टम शुरू हो गया, यहीं से आधा डाइजेस्ट होगा सह लीजिए, फिर वो जाएगा नीचे मैदे के अंदर, स्टमक में। स्टमक में जो जाते ही जो है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, वो उस बाहर से आए हुए फूड को, हमारे जो भी हमने खाया, इनटेक किया, उसको जो है वो क्या करता, दो काम करता है कि अगर ख़राब है किसी किस्म वजह से, तो उसको तेजाबियत में लग रख करके यानी शुद्ध कर देता है, जैसे आग जला देती है, ऐसे ही उसका काम यही है। दूसरे सड़ने से बचाए, ये दो काम है तेजाब का, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे यानी आप मैदे में निकलती है, खाते फौरन कुदरती तौर पर, जैसे हमने मुंह में रखा निवाला, ऑटोमेटिक सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो गई, सलाइवा आ गया, ऐसे ही जो है हाइड्रोक एसिड भी, तो HCl वो निकलना शुरू हो जाता है।
1: तो कुछ ऐसे यूनानी नुस्खे हैं जिन्हें हर कोई अपना सकता है और अपनाकर दुरुस्त रह सकता है, डॉक्टर सूफिया?
2: आदमी खाने पीने का ख्याल रखे और फ्रेश खाना खाए, रात का रखा हुआ या कई दिनों का रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ये सब चीज़ें। कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा लीवर अगर सबसे बेशकीमती है तो उसको अच्छा बना के रखेंगे, उसी से सारी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं पेट की। तो नुस्खों में तो आप ये है कि जवारिश वगैरह ही दे सकते हैं एंड मक्को दे सकते हैं, सफ़ूफ़ हाजिम हमारे पास एक बहुत अच्छा आता है, नमक शेखुल रईस बहुत अच्छा आता है जो कि आप सलाद पे डाल के खा सकते हैं। फ्रूट का इस्तेमाल अच्छे से करें आप, और खाने का जो भी खाना आप खाएं वो फ्रेश होना चाहिए, उसके अलावा उसमें मिर्च मसाले का बहुत परहेज़ होना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें जो घर में चीज़ें हों उसका ही इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए।
1: और डॉक्टर सैयद, आप कुछ बताएंगे कि कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम अपने डाइजेशन को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि क्या खाएं क्या ना खाएं वो तो सब बता दिया,
0: जी जी
1: लेकिन
0: सर,
1: डाइजेशन मजबूत कैसे बनाएं?
0: बस इसमें ये ख्याल रहे कि हमारा लीवर जो है, जो सदियों से हुक्मा ने ये सिफारिश की है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, उसके लिए लीवर यानी जिगर का सही होना बहुत ज़रूरी है, तो उसका ख्याल रखें। इसके अलावा जो है, आदत में किसी दवा का इस्तेमाल ना रखें, लेकिन ज़रूरत पर सफ़ूफ़ हाजिम ये बना बनाया भी आता है, हम बना भी सकते हैं घरों में। जैसे उसमें जो अहम जुज़ है वो है सौंफ का, अजवाइन का, जीरे का, जीरा दो तरफ सफ़ेद और काला होता है, दोनों ले लिया जाए, नमक काला हो, और जो हम नमक खाते हैं नमक खुरदनी कहते हैं उसे, नमक लाहौरी, इन सब का मिक्सचर बना करके हम वज़न कहते हैं बराबर बराबर, जैसे 10-10 ग्राम ले लिया सबको, उसमें काली मिर्च है वो ले ली जाए, इसका एक पाउडर बना के रख लें हम, तो ये चीज़ जो है बहुत बेहतरीन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रहेगा, ये हम इस्तेमाल करें, और सलाद का इस्तेमाल ज़रूर रखें।
1: वैसे समय हमारा जाने का हो गया है, लेकिन चलते चलते एक मैसेज हमारे पास आ गया है तो मैं शॉर्ट में आपसे लेना चाहूँगी कि वो लिखते हैं कि सर, एलोपैथिक में गॉल ब्लैडर स्टोन ऑपरेशन से निकाला जाता है, यूनानी मेडिसिन में कोई दवाई है जिसकी गॉल ब्लैडर स्टोन घुल जाता हो या ख़त्म हो जाए? ये
0: असल
1: है
0: में
1: रिकू सिंह,
0: हाँ, ये बहुत
1: रिकू
0: सही
1: सिंह।
0: सवाल इन्होंने किया है, अच्छा सवाल है। इसमें चूंकि यूनानी में जो है, हम दवाएं जो देते हैं वो लीवर के इम्प्रूवमेंट के लिए देते हैं, ये सर्जिकल केस असल में है, इसलिए हम इसको रेफ़र कर देते हैं, ताकि इलाज बिलियर के तौर पर यानी सर्जरी उसकी आसानी से हो जाए और उससे फ़ायदा उठाए वो।
1: तो वक्त हो चला है जाने का, लेकिन जाते जाते एक लाइन में संदेश हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या देना चाहेंगे, डॉक्टर सैयद आप बता दीजिए संदेश हमारे श्रोताओं के लिए।
0: देखिए, काफ़ी अच्छे सवाल आता है, और मुख्तसर बात यह है कि हमने सबसे पहले भी ये बात कही थी कि सादा खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, समय से खाना खाएं और समय से सोएं, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हम खुश रहें और खुश कभी रहें, जब सेहत हमारी अच्छी होगी।
1: और डॉक्टर सूफी आप क्या संदेश देंगी?
2: मेरा भी यही कहना है कि खाना फ्रेश खाएं, ताज़ा खाएं, वर्जिश करें, नींद अच्छी लें और खुश रहें।
1: तो दोस्तों धूप की गर्मी पर हमारा बस नहीं।

0: नहीं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना हमारे हाथ में जरूर है, तो पानी भरपूर पीजिए, संतुलित आहार लीजिए और अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखिए, क्योंकि पेट रहेगा दुरुस्त तभी जिंदगी रहेगी मस्त। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर सैयद अहमद खान, यूनानी एक्सपर्ट, और डॉक्टर सूफिया उत्साही, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यूनानी मेडिसिन, CGHS। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया,
2: आपका भी बहुत
1: आकाशवाणी
2: शुक्रिया।
1: का।
0: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूँगी, अच्छी सेहत कोई मंजिल नहीं बल्कि जीवन भर की एक सतत यात्रा है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहे, सजग रहे, मुस्कुराते रहे, नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: क्या बात है, मैं लगता है साडे सारे लिसनर्स ने बहुत इंजॉय करी होगी तुहाडी डिफरेंट डिफरेंट वॉइसिस।
1: मैं एक्चुअली खुद नूं खुश नसीब समझदा कि मेरे राहीं किसी दे चेहरे ते मुस्कान आई है।
0: बिल्कुल, मैं लगता है कि सब तो वड्डी खुशी, सब तो ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलती ही उदों है जदों तुहाडे थ्रू कोई लोग या कोई भी परसन या काफ़ी सारे लोग तुहानूं देख के, तुहानूं सुन के खुश होन या तुहाडे थ्रू खुश होन। सो बेसिकली आपां आने अपनी वॉइसिस ते, ए तां ऑगी एंड द कॉकरोचेस हो गया, बट इस तो इलावा कार्टून्स तो इलावा कि ऐसी वॉइसिज हैं जो तुहाडे दिल के बहुत करीब होन, या जैसे कि फर्स्ट वॉइस सी रोहित दी जदों तुसीं मूवी देख रहे सी, बेसिकली बॉलीवुड करैक्टर्स, तां जदों तुसीं बाकी सारे बॉलीवुड करैक्टर्स दी आवाजा कढ़नियां शुरू कीतियां, उस चीज़ ते पकड़ बना के रखना या फिर उस चीज़ नू अग्गे वधाना, उस चीज़ नू अग्गे लेके जाना, एक एज अ प्रोफेशन उन्हूं चूज़ करना, वो जर्नी किवें स्टार्ट हुई ते तुसी किवें डिफरेंट डिफरेंट वॉइसिस शुरू कीतियां कढ़नियां? क्योंकि एवें नहीं हुंदा कि सब दी आवाज़ कढ़ना एक छोटा जिहा काम है, ईजी वर्क है, इहदे च वी मैनूं लगदा प्रोपर रियाज़ दी जरूरत ते हुंदी होएगी, तां वो किवें शुरू कीती तुसी?
1: रियाज़ इत्थे सब तों वड्डा रोल प्ले करदा है। तुसी किसी वी कला दा हिस्सा हो, हर पासे रियाज़ ही तुहानूं परफेक्ट बनाउंदा है। तो अगर गल करिए मिमिकरी दी, मिमिकरी विच दिमाग नूं रिलैक्स रखोगे तो तुसीं परफेक्ट हो पाओगे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि तुहाडा जो दिमाग है तुहाडे पूरे शरीर नूं कंट्रोल करता है।
0: बिल्कुल,
1: मैं सिर्फ एक आवाज़ मिमिक करदा सीगा जदों मैं स्टार्ट कीता, अज मैं 30 वॉइसिस मिमिक कर सकदा, इंकलूडिंग कार्टूनस, इंकलूडिंग बॉलीवुड आर्टिस्ट।
0: क्या बात है।
1: और 30 विचों कुछ हैवी टोन भी होणगियां, कुछ लो टोन भी होणगियां, वो सिर्फ रियाज़ ही तुहानूं करवा सकदा है।
0: जी,
1: दूजी गल, तुहाडी अखां ते कन्न तेज होने चाहिए। सुनने वाले नूं लगेगा कि मिमिकरी च अखां ते कन्न दा की काम।
0: जी,
1: अखां नाल देखना, कन्नां नाल सुनना,
0: ऑब्जर्व करना,
1: ये चीज़ जरूरी है। तुसी किसी करैक्टर नूं किस तरह पकड़दे हो ते उन्हूं किदां अपने दिमाग विच बैठा लैंदे हो।
0: जी,
1: मिमिकरी एक ऐसी इमेज बन चुकी है, सब नूं लगदा है कि आवाज़ां नूं कॉपी करना।
0: जी,
1: बट मिमिकरी सिर्फ आवाज़ां नूं कॉपी करना नहीं होंदा। अगर तुसी सर्च करोगे व्हाट इज मिमिकरी, ते यू विल गेट टू नो कि किसी भी एक्शन नू कॉपी करना मिमिकरी होंदी है। तुसी किसी दी आवाज़ नू कॉपी कर सकते हो, किसी दे अंदाज़ नू कॉपी कर सकते हो, किसी दे तौर तरीके नू कॉपी कर सकते हो।
0: बिल्कुल,
1: मिमिकरी विच अगर मैं किसी दी आवाज़ कॉपी कर रहा ते ओदे नाल नाल मैं ओदा गेटअप ते ओदी लुक भी कॉपी कर लवां,
0: बिल्कुल,
1: ते मैं उस करैक्टर नू परफेक्टली अदा कर पाऊंगा।
0: मतलब प्रॉपर उस करैक्टर नू खुद जीना, अपनी पर्सनैलिटी भुल के सिर्फ अपने आप नू वार वार यही कमांड देना और अपने दिमाग च ये चीज बिठाना कि एक कोई होर परसन नहीं है, मेरी ही पर्सनैलिटी है।
1: बिल्कुल, अगर मैं रोहित मेहरा नू मिमिक करना है कोई मिल गया वाले नू, ते मैनू खुद नू पहले एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मैं ओदी तरह एक बच्चा वा।
0: जी,
1: ते मेरे दिमाग च अगर बैठ गया कि मैं एक बच्चा वा, तो मेरे गलों आवाज़ में ही बच्चों वाली निकलनी चाहिए है, जिदा कि रोहित मेहरा दी है।
0: जी,
1: बट अगर मैं मिमिक करना है गुलशन ग्रोवर साहब नू, उन्होंने आवाज़ भारी है, तो मैनू पहले खुद नू रियलाइज़ करना पाएगा, खुद के दिमाग च बिठाना पाएगा कि मैं एक जोरदार विलन हाँ, जिदी आवाज़ विच बहुत दम है, जिदी आवाज़ सुन के सामने वाला थर थर कंब जांदा है। तो अगर मैं अपने दिमाग विच उस छवि नू बिठा लिया, तो फिर मैं उस आवाज़ नू आसानी नाल मिमिक कर पावांगा। उस कैरेक्टर नू जे असी आसानी नाल फील कर लईए, वो साडे वास्ते एक सब तो वड्डी थैरेपी ते सब तो वड्डी एक्सरसाइज है।
0: ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੋਇਸਿਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ 30 ਵੋਇਸਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 30 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬ੍ਰੇਕ।
2: ਅਭੀ ਨਾ ਜਾਓ ਛੋੜ ਕਰ

हाँ जी दोस्तों, तुसी प्रोग्राम सुन रहे हो जुवाणी। तो अगली जिहड़ी खबर असी तुहाडे लई लैके आए हाँ वह है PSSB लाइन सुपरिटेंडेंट की, जिस दे विच की टोटल 6 पोस्ट जिहड़ियां है वह निकलियां ने। इस दे विच क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दे विच होना चाहिए आ, ते पंजाबी तुहाडी इस दे विच लाजमी होनी चाहिए आ। ते इस दे विच जिहड़ी तुहाडी एज लिमिट है वह 18 साल तो लैके 37 साल तक होनी चाहिए आ। ते दोस्तों इसकी जिहड़ी इहनू अपलाई करन दी एप्लीकेशन

वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, हैलो, हाय, और सब जो कि असी एक दूसरे नू नमस्ते करते हैं, मतलब हर एक चीज़ नू मेरा स्वीकार करो तुसी जो असी एक दूसरे नू कह के विश करते हैं जी। सो दोस्तों, प्रोग्राम दी शुरुआत हो चुकी है जिसका नाम है लव यू जिंदगी। जिंदगी जिंदगी का नाम सुन के ना मन विच बड़े ख्याल आते हैं कि आखिर जिंदगी है की है। कुछ लोग कहेंगे कि जिंदगी एक बहुत खूबसूरत है, कुछ लोग कहेंगे जिंदगी दुखा का नाम है, कुछ लोग कहेंगे जिंदगी खुशी का नाम है, कुछ लोग कहेंगे कि जिंदगी दर्द भरी है, कुछ लोग कहेंगे कि जिंदगी सुलझी हुई है, कुछ लोग कहेंगे जिंदगी उलझी हुई है। सो जिंदगी साड़ी हर एक तरीके दे नाल हुंदी है, कभी उलझी हुंदी है, कभी सुलझी हुंदी है, पर साड़े उत्ते डिपेंड करता है कि असी अपनी जिंदगी नू किस तरीके दे नाल चला रहे हैं, किन्नियां उस विच खुशियां भरनियां किन्नियां नहीं, ये सब सानू डिसाइड जिहड़ा है ना नहीं करना पैंदा, मतलब असी आपां डिसाइड नहीं कर सकते, ये डिसाइड करता है साड़ी जिंदगी दे विच लिखे हुए कर्म कह सकती हैं, और बहुत सारियां वो गल्लां जो असी अपनी जिंदगी विच करते रहने हैं। ठीक है जी। सो जिंदगी दोस्तों ताश के पत्तिया वर्गी होंगी है, जिन्ना जितना सिर्फ चंगे पत्तिया निर्भर नहीं करता, बल्कि कई बार खराब पत्तिया नाल तुसी खेडदे किवें हो इस ते निर्भर करता है। साड़ी जिंदगी विच भी कई बार अजिहे दिन आउंदे ने जदों लगता है कि

0: बस फिर की सीगा खरगोश ने लगाया अपना दिमाग। वह बिल्कुल शांत चित नाल रस्ते विच रुकदा रुकदा आराम नाल शेर कोल पहुंचया। शेर उते भुख नाल पागल होया पिया सी ते गरज रहा सी। जदों खरगोश पहुंचया शेर ने लाल अखा करके पुछया, एक तां तू इन्ना छोटा है, उत्तों इन्नी देर नाल आया, मैं अज तेनू भी खावांगा ते कल तो जंगल दे सारे जानवरां नू मुका देंगा। इन्ना गुस्से च शेर ने यह गल कही। खरगोश ने ना बिना डरे बहुत ही निम्रता दे नाल नाटक करदिया यह कहा, महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो समय सिर आ रहा सी, पर रस्ते विच मैनू एक होर शेर मिल गया। वह कह रहा सी कि उस जंगल का असली राजा है, मैं तो मसा अपनी जान बचा के तुहाडे कोल पहुंचा हाँ। हुण जो हंकारी हुंदा है ना दोस्तों, वह बहुत जल्दी गुस्से विच आ जांदा है। ते जिहड़ा उह शेर सी खुंकार, इस खुंकार शेर ने अपना आपा खो दिता। वह बोलिया, मेरे हुंदे होए दूजा राजा, चल मैनू दिखा कित्थे है वह। सियाना खरगोश शेर नूं इक बहुत ही डूंघे खूह कोल लै गया। खरगोश ने इशारा करके कहा, महाराज वह इसे किले के अंदर लुकिया बैठा है। शेर ने जिवें ही खूह के अंदर झाकिया, शेर ने देखा कि हाँ यार सच्ची इत्थे तक होर शेर भी है, क्योंकि पानी विच उन्हें अपना परछावां दिखिया सी। हंकार अते गुस्से कारण वह इन्ना अन्ना हो चुकिया सी कि वह ये भी ना समझ सकिया कि वह खुद ही है। उन्हें लग्या कि शायद ये कोई होर शेर है। फिर की सीगा जी, हूँ देख लो शेर नूं लग्या एक होर राजा आ गया, ये किदा शेर बर्दाश्त कर सकता से। वह गुस्से दे विच आ गया, उन्हें की किता वह हंकार अते गुस्से कारण इन्ना अन्ना हो गया से ना उस विच कि वह ये भी ना समझ सकिया कि वह की करन जा रहा। उसने समझिया कि वही दूजा शेर है। शेर गुस्से विच जोर नाल दहाड़िया तां खूह दे विचों वी उही आवाज आई, इदां ही। बस फिर की सी, उसने दूजे शेर नूं मारन लई खूह विच छाल मार दित्ती। ते फिर की होया इह तां तुसीं समझ ही गए होने हो। उह शेर हमेशा लई ही डुब गया ते डुब के मर गया। जी हाँ दोस्तों, एक छोटे जिहे खरगोश ने अपनी सोच ते अकल दे नाल पूरे जंगल नूं एक बहुत वड्डी मुश्किल तों मुक्त कीता है। ते कमाल दी गल इह है कि इस तरीके दे दिमाग अगर असीं भी लगाइए तो असीं भी बहुत सारी चीज़ें तो पढ़ सकते हैं। सो एक कहानियां चलदियां रहनगियां, तुसे किते नहीं जाना। साडे प्रोग्राम लव यू जिंदगी नूं इसी तरीके नाल तुसीं इंजॉय करदे रहो ते बने रहो साडे नाल। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी दा सलंधर दा चैनल है ते मैं हाँ तुहाडी दोस्त आरजे सुरभे। प्रोग्राम च गीत प्ले करन जा रही हाँ।
1: ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨਾ ਢਾਇਓ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਸੀਤ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ।

वेलकम बैक दोस्तों प्रोग्राम लव यू जिंदगी विच। मैं हाँ तुम्हारी यार जे दोस्त सुरभि। प्रोग्राम विच असी अज कल बात कर रहे हैं, अज नहीं हमेशा असी प्रोग्राम दे विच, इस खास प्रोग्राम विच मोटिवेशनल गल्लां करदे, इंस्पिरेशनल गल्लां करदे हाँ। प्रोग्राम दे विच मैं तुहानू सुनाई सी कहानी, पहला वो कहानी जिसने सिर्फ बच्चों सिर्फ खुश नहीं किया, बच्चों एंटरटेन करने वास्ते नहीं सी, बच्चों ने सिखाने वास्ते सी कि कई बार सानू अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए जेड़ा सानू मिलिया होया है। सो आप कई बार सिर्फ दिल की गल सुनते हैं तो कई बार हालात में उदा ही रहन देने जिदा चलता है, जिदा कि उस शेर का सगा कि उन्हें कहा कि मैं इतने का राजा, जो मैं कहांगा उदा ही होगा चाहे वह गलत क्यों ना कर रहा हो। एक खरगोश ऐसा सगा, एक छोटा जिहा जानवर जिन्हों देख के बंदा कहेगा यार इन्हें की ही कर लेना है। ता ही कहते हैं किसी को देख के ये ना देखो कि यार की ही कर लेगा, एक वो कि यह भी बहुत कुछ कर सकता है। वह खरगोश छोटा जहा जरूर सेगा पर उन्हें किया बहुत कुछ है, उन्हें बस अपना दिमाग लगाया, बाकी काम तो अपने आप ही हो गया से, बाकी काम तो शेर ने कर लिया से, वो तो तुम जानते हो ना। हुण तुम सोच रहे होवोगे कि यह तो कहानियां ने जानवरों दी गल्लां ने, पर कि असल जिंदगी में साढ़े हड मास के बने इंसानों भी कोई अजिहा खरगोश हुंदा है जो अपने तो हज़ार गुना वड्डी मुश्किल दे शेर नू खूह विच सुट देवे। हाँ मेरा जवाब होएगा हाँ बिल्कुल होंदा है। मैं तुहानू सुनावांगी एक अजिही असली हीरो की कहानी जिहदे विच उस जिंदगी नाल जुड़ियां बड़ियां सारियां गल्लां ने जो ये सिखा दिंदियां ने कि हालात जिहड़े ने बाद विच नहीं बदलते, कई बार तुसीं जदों पैदा हुंदे उदों भी हालात कई बार बड़े खराब हुंदे है, तो उदों भी असीं जिंदगी विच यही सोचते रहिंदे हां कि इदां सी क्यों होया। कहानी सुना रही हूँ मैं श्रीकांत बोला दी, ये असली जिंदगी दी कहानी है उन्हां दी। सो दोस्तों असल जिंदगी विच भी कोई अजिहा इंसान है जिसने मुश्किलों गोडे

जी हाँ दोस्तों, तैयार रहना चाहिए इस जग की जंग तो भी लड़न वास्ते। ये जग ही जड़ा ना सब तो बड़ी जंग है वैसे, साड़ी जिंदगी नालों भी ज़्यादा। जिंदगी जंग नहीं है, अपन जंग बना दें जंग नू। सो मैं गल कर रही सी इस गीत तो पहला श्रीकांत दी। श्रीकांत जदों स्कूल विच उन्हें बहुत वधिया नंबर ले, मैं कहा कि असली लड़ाई ना बाद भी शुरू होंदी है। श्रीकांत 11वीं दे विच ना साइंस पढ़ना चाहुंदा सी, पर साढ़े देश के कानून के मुताबक उदों किसी भी ब्लाइंड स्टूडेंट नू साइंस रखने की इजाजत नहीं सी। बोर्ड ने कहा तुसी देख नहीं सकते, तुसी लैब दे विच प्रैक्टिकल किवें करोगे, इस करके आर्ट्स पढ़ो। सोचो जे तुसी कुछ करना चाहते हो तो तुसी वो नहीं कर सकते तो कितना गुस्सा आएगा। दिल करेगा ना यार ये की मतलब है, मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकती, इदा कि मैं ब्लाइंड हाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, यही मन के ख्याल श्रीकांत पे आया। इतने ना श्रीकांत ने उस सियाने जे खरगोश वांग ना हौसला दिखाया। उसने कहा जे कानून गलत है तो मैं कानून बदलांगा, पर हार नहीं मन्नांगा। उस 16 साल दे निक्के जे मुंडे ने सिस्टम दे खिलाफ केस लड़िया। 6 महीनों दे संघर्ष तो बाद वो केस जित गया। उसने साइंस पढ़ी और 12वीं दे विच 98% यानी कि 98% नंबर लैके टॉप किया। किन्नी हैरानी वाली गल है, जिस बच्चे नूं इह कहा गया सी कि तू पढ़ नहीं सकता साइंस किवें करेगा, इस करके तू आर्ट्स रख, वह बच्चा 12वीं दे विच साइंस विच 98% लैके आ रहा। पर मुश्किलों का शेर अजे भी सामने खड़ा सी। ये मुश्किलां टलियां नहीं है। भारत के नामवर इंजीनियरिंग कॉलेज ने उसनू एडमिशन देने तो मना कर दिता। सब तो वड्डा दुख इस गल का कि 12वीं इन्ने नंबर लैके भी कॉलेज एडमिशन नहीं मिल रहा से, क्योंकि वह देख नहीं सकता से कि सिर्फ देखना ही उसकी कमजोरी बन गई सी, जिस करके अपनी जिंदगी अगे नहीं बढ़ सकता से। ये गल श्रीकांत सोच सकता से, पर श्रीकांत ने यह गल नहीं सोची। श्रीकांत ने हंस के कहा जे मेरा देश मैं स्वीकार नहीं कर रहा तो कोई गल नहीं, मैं दुनिया को दिखावगा। उसने ना अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी MIT दे विच अप्लाई किया। MIT ने उसकी प्रतिभा देखा अते उसनू पूरी स्कॉलरशिप दिती है। श्रीकांत MIT विच पढ़न वाला दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय ब्लाइंड विद्यार्थी बनया। पढ़ाई खत्म हुई, अमेरिका विच लखा डॉलर दियां नौकरियां उसके पैरां दे विच सन। सोच के देखो दोस्तों, वो बच्चा जिन्हों हर किसी ने ठुकरा दिता ये कह गया कि तू उतना देख ही नहीं सकता तो की करेगा, ईवन कि उसके अपने देश ने ते विदेश ने उन्हों अपना लिया। उसकी अहमियत जानी, उसकी कला नू पहचानिया, उसके हुनर नू देखिया समझिया। पर ना गल इत्थे भी नहीं मुकी। श्रीकांत दे मन विच ना कुछ होर से। उसने सोचिया जिहड़ियां मुश्किलां मैं चलिया ने मैं अपने देश दे दूजे पहाज बच्चियां नू ओह नहीं चलन देंगा। वो भारत वापस आया। 2012 दे विच उसने बोलेंट इंडस्ट्रीज नाम दी एक कंपनी शुरू की।

हाँ जी, गुलम हर घर तुम्हारा नाम होता है। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है सारिका जी दी, जिन्होंने एक छोटी उम्र के विच जदों एडी मेहनत करके अपना नाम बनाया, मुकाम हासिल किया। कहते हैं कि जो 15 साल दी हुंदे ने सारिका जी, और फिल्मों के मुख अदाकारा लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम करन लग पैंदे ने। उन्हां दी अखां दी खूबसूरती, उन्हां दी अदाकारी सब नूं कायल कर दिंदी है। उन्हां दा ध्यान, लोगों का ध्यान इन्हों वाल अपने आप खिंचया चला जाता है। और कहते हैं कि सचिन पिलगांवकर होना दे नाल राजश्री प्रोडक्शन दे विच फिल्म गीत गाता चल 1975 दे विच सारिका दी जोड़ी अदाकार सचिन होना दे नाल बनी। अदाकार सचिन पिलगांवकर, जो कि बहुत वड्डा नाम ने, उन्हां दे नाल जोड़ी इन्हां दी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई। ये फिल्म बहुत वड्डी हिट हुई। इस तों बाद दोवां दे कई हिंदी अते मराठी फिल्मों दे विच इकट्ठियां काम किया। लोगों ने इस जोड़ी नूं बहुत ज़्यादा पसंद किया। होर फिल्मों की जेकर गल करिए 70 अते 80 के दहाकों के कई वख वख तरह दी फिल्मों के इन्होंने काम किया। उन्हां विचों कुछ प्रमुख हैं मधुमालती, जानी दुश्मन, गृह प्रवेश, विधाता, बाजार, मासूम, राज तिलक। इस तो इलावा मां नाल जो भी इन्होंने रहा, कहिंदे कि बहुत सारे फिल्मों के जो इन्होंने काम किया तो कहिंदे ने कि जो कि इन्हां दी फिल्मों की जिहड़ी काम करन दी कैपेबिलिटी हुंदी सी इन्हां दे, बहुत ज़्यादा जो रहा कि किस तरीके दे नाल इन्हां ने काम किया, वो लोगों ने इस तरीके दे नाल उस नूं ग्रैब किया जो लोगों नूं इन्हां दे विच काबिलियत नज़र आई। रातों रात जदों इन्हां ने सचिन पिलगांवकर होना दे नाल काम किया तो लगातार इन्हां दी जोड़ी जिहड़ी है प्रचलित हुंदी रही। मुख तौर पर जो इन्हां दी खास फिल्म रही गीत गाता चल। इस तो इलावा सारिका होना दी बहुत सारिया गल्लां भी करन वालियां ने, किस तरीके दे नाल इन्हां नूं राष्ट्रपति होना ने अवार्ड दिता और की कुछ इन्होंने प्राप्त किया, कदों इन्होंने फिल्मों तो दूरी बनाई, वो सारा कुछ दसांगे। बने रहो साडे नाल 102.7 FM रेनबो दे जलंधर केंद्र दे नाल। मैं थोड़ा मित्र RJ परविंदर।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो जी, रोजी डिकैस्ट्रो जी, पॉल डिकैस्ट्रो जी, विलिस डिकैस्ट्रो जी कह रहे हैं कि सॉन्ग है जी तरिश्क का मुझ पे हुआ मूवी नागिन, आशा भोसले जी और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। यर है जो फिल्म रिलीज़ हुई है 1976 में। थैंक्स, और हम इनका गीत प्ले कर देते हैं जी।

महाराष्ट्र से पीएस नहावर नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, सोपान ताइड़े, और मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेकर। धन्यवाद जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका 102.7 FM रेनबो पर अपनी फरमाइश भेजने का।

102.7 FM रेनबो दे उते प्रोग्राम चल रहा है। दिल चाहता है तो साढ़े प्यारे फरमाइश करने वाले स्रोते सानू फरमाइशा भेज रहे ने, कह रहे ने कि फिल्म परवरी से गीत हम प्रेमी प्रेम करना जाने। सुखदेव सिंह, नरेंद्र कौर जी, सन्नी मुन्नी, काका बिट्टू, लाडी मोहन मास्टर, जनक नगर जलंधर तो ते फरमाइश इन्हां दी प्ले कर देने। तो बाकी जिन्होंने अजे तक फरमाइश नहीं भेजी है उन्होंने गुजारिश है जी प्लीज़ फरमाइश भेजो जी।

102.7 FM रेनबो दे ते प्रोग्राम चल रहा है जी, दिल चाहता है ते अगला प्रोग्राम, इस प्रोग्राम दे ची अगली फरमाइश जड़ी है, कह रहे ने कि सुप्रेम नमस्कार, फिल्म हावड़ा ब्रिज स्वर आशा जी से आइए मेहरबान गीत, गांधीनगर गुजरात से जी के परमार जी, ज्योत्सना परमार जी, दीपल और हर्ष जी, आइए इनकी फरमाइश को प्ले कर देते हैं 102.7 FM रेनबो पे।

नमस्कार, 102.7 FM रेनबो आपने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आरजे परविंदर।

कहते हैं कि शहर की रात और मैं नशाद और नकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। और कहते हैं कि वो हाथ रख कर जो वो पूछे दिले बेताब का हाल, हाथ रख कर वो जो पूछे दिले बेताब का हाल, जो भी आराम तो देख कह दूँ मुझे आराम नहीं। 102.7 FM रेनबो पे शाम ए गज़ल।

कहते हैं कि दूर तक छाए थे बादल, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था कि इस तरह बरसात का मौसम भी कभी आया ना था। कई बार होता है कि ऐसा गम घेर लेता है कि आप सोचते हैं कि अचानक ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तभी ये फरमाया जाता है कि दूर तक छाए थे बादल कि और कहीं साया ना था, कि मतलब दूर दूर तक कोई तब आस नजर नहीं आती। और फिर उसको बयां करते हुए कहा कि इस तरह का बरसात का मौसम कि ऐसा गम तो मेरी जिंदगी में कभी आया भी नहीं था। 102.7 FM रेनबो, शाम ए गजल।

कहते हैं कि एक रोज खेल खेल में हम उसके हो गए, एक रोज हम खेल खेल में उसके हो गए, और फिर तमाम उम्र किसी के ना हुए। और कहते हैं कि कोई तो ऐसा घर

जहाँ से प्यार मिल जाता, वही बेगाने चेहरे जाएं जाएं जिधर जाएं। 102.7 FM रेनबो, शाम की गजल।

कहते हैं कि क्या कहूँ कि किस तरह से जीता था, गम को खाता हूँ, आंसू को पीता हूँ। 102.7 FM रेनबो, शाम गज़ल।

नमस्कार। रात के 10:30 बज चुके हैं। कार्यक्रम एक प्यार का नगमा है। 102.7 FM रेनबो आपने ट्यून किया है, जालंधर का आकाशवाणी का यह केंद्र। कहते हैं कि वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आज़ाद हैं। इनको खो करके मेरी जाने जान, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। 102.7 FM रेनबो एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि जब से तूने दीवाना बना रखा है, जब से तूने दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि कोई समझे तो एक बात कहूँ, कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा है।

हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो जाएंगे। अभी कुछ बेकरारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि तुम एक बार फिर उसी अदा से अंगड़ाई लेकर हंस दो ना, आ जाएगा फिर से पलट कर वो गुजरा हुआ जमाना। 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और ही कहा है मुझसे। 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा।

कहते हैं कि अजब मौसम है, मेरे हर कदम पे फूल रखता है। मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। मैं जब सो जाऊं तो इन आँखों पे अपने होठ रख देता है। यकीन आ जाएगा पलकों के तले भी दिल धड़कता है। 102.7 FM रेनबो एक प्यार का नगमा है।